0: पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता, भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनो ने आपनी बोन अंजलिनु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणी मान स्वागत कर रहा हूं हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे ज हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है के फल ने फूल बनवानी अवस्था में फसल ने देखरेख अपना ने हरते करवी है ने कई कई विशेष बातों नु अपना ने ध्यान रखवानी जरूरत है। तो भाई बुनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कनी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बुनो आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ગીત તો આઈ શું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણે મન સ્વાગત કરો હું અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ મોનું ગીત કે પહેલાં આપણે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હોં કે આપણે ફૂલ ને ફળ બળવાની જે સ્થિતિ રહે તે વખત આપણે આપણી ફસલની દેખરેખ હરતે કરી શકો. તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મંગીલાલજી. તો સૌથી કે પહેલા આપણે સાંભળી લેણાની વાત મોરે કરો આપણી વાતે.
1: सर नमस्कार.
2: नमस्कार जी.
1: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागर रेडियो परिवार में.
2: जी धन्यवाद.
1: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्होंने जो भी फसल कर रखी है उसमें फल और फूल बनने की अवस्था में उन्हें फसलों की देखभाल कैसे करने की जरूरत है.
2: तो देखिए जैसे हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है.
1: बिल्कुल.
2: और ये जो अवस्था है ये अवस्था भी हमारे फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है. जैसे हम बात करते हैं कि जैसे फूल आना या फल बनना तो ये क्या होता है कि जैसे ये जो समय होता है इसमें पौधों को क्या अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकता होती है.
1: बिल्कुल.
2: जिसमें जैसे इसमें क्या फूल और जो फल बनते हैं ना और उसमें बीज बनने की अवस्था शुरू होती है उसके अंदर.
1: बिल्कुल.
2: यदि मान लो कि अवस्था में पौधे पर्याप्त नमी या पोषण या खाद या देखभाल आप नहीं करते हो तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.
1: जी जी.
2: फूल झड़ सकते हैं अगर आप निगरण नहीं रखोगे तो. उसी तरह जो छोटे फूल है वो भी खराब हो जाते हैं. तो हमारा क्या है इस अवस्था में हमारी जो निगरानी है हमारा खेत का अवलोकन है वो हमें समय समय पर करने की जरूरत है.
1: जी जी.
2: ताकि हम लोगों को पता लग सके कि कितनी नमी है कितने फूल बन रहे हैं. ऐसा तो नहीं कि फूल झड़ रहे हो.
1: बिल्कुल.
2: तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें इस अवस्था में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है. जैसे कि हम जो मिट्टी की नमी है उसको देखकर सिंचाई का जो प्रबंधन है वो करें हम.
1: जी जी.
2: अगर नमी पहले से अधिक है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर नमी कम है तो आप वहाँ पानी दे सकते हैं.
1: बिल्कुल.
2: इसी तरह क्या होता है कि जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको उसको खेत में जो उठाकर देखना चाहिए हाथ से कि उस मिट्टी की जो है वो कैसी है. जैसे होता क्या है कि मिट्टी एक तो भारी हो जाती है या फिर हल्की हल्की रहती है तो वहाँ देख ले कि अच्छा नमी उसमें कितनी है तो चेक करना जरूरी है. उसके अनुसार फिर आप जो है उसमें पानी देने की सोच सकते हैं.
1: जी जी.
2: इसी तरह जैसे मिट्टी है तो पानी अगर मान लो कहीं ऐसा खेत है आपका कि उसमें लंबे समय तक पानी जमा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि लंबे समय तक पानी अगर खेत में जमा रहता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है आपके फल और फूलों को दोनों को. इसी तरह जो है जैसे घास है हम मल्चिंग की बात करते हैं तो अगर आपके वहाँ आसपास अगर आपके पास उपलब्ध है मल्चिंग करने के लिए पत्तियां हैं घास है या हमारे जो गाय भैंस को हम चारा खिलाते हैं उसका जो अवशिष्ट बच जाता है वो हो तो उसको आप वहाँ कर सकते हो तो उससे जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी.
1: बिल्कुल.
2: इसी तरह क्या होता है कि अभी बारिश का मौसम है तो बारिश हो सकता है कि ज्यादा हो जाए या कम भी हो सकती है. तो बारिश अगर अधिक हो जाए तो हमारे खेत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अतिरिक्त पानी है वो निकल कर जाए.
1: बिल्कुल.
2: वो जमा नहीं होना चाहिए. तो इन चीजों का हम लोगों को बहुत ध्यान रखने की जो आवश्यकता है. इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जब ये अवस्था होती है तो इस अवस्था में क्या होता है कि मिट्टी को और पौधों को दोनों को पोषण की जरूरत होती है.
1: जी जी.
2: जिसमें अब पोषण की हम बात करते हैं तो हमारे जो समुदाय में हम परंपरागत तरीके से हम खेती करते हैं तो जैसे गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या हमारा उखेड़ा है हम जीवामृत दसपर्णी की बात करते हैं तो ये जो चीजें हैं उनकी आवश्यकता होती है.
1: बिल्कुल.
2: क्योंकि जैसे अगर आप खाद समय से देंगे तो आपकी जो फसल हो उसका ग्रोथ अच्छा होगा.
1: जी हाँ.
2: इसी तरह क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो जैसे जीवामृत की हम बात करते हैं या दसपर्णी है तो ये अवस्था होती है इसमें फूल झड़ने के चांस रहते हैं.
1: जी हाँ.
2: अगर आप उसको धीरे धीरे धीरे धीरे समय समय पर आप छिड़कते हैं तो आपके जो फूल है वो झड़ेंगे नहीं और अधिक मात्रा में जो आपके फल और जिसकी बात करते हैं वो अधिक लगेंगे.
1: बिल्कुल सर आपने सही कहा. जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि फूल और फल बनने की अवस्था में किस तरीके से खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है संतुलित पोषण का हमें ध्यान रखने की जरूरत है. यही फूलों की रक्षा कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन.
2: जैसे हम बात करते हैं फूलों की रक्षा की तो देखो सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है कि उस अवस्था में आपको बहुत गहनता से ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। और सुरक्षा तो अगर बात करें तो वो आपकी सावधानी एक सुरक्षा है कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे अपने पहले बात की, जैसे फूल आ रहे हैं अगर अचानक मान लो को गिरने लगे तो हम रासायनिक की जगह जो देसी दवाई हम, जैसे हमने बात की थी जीव अमृत है, दसपर्णी है या ब्रह्मास्त्र है, कंडा पानी है, लहसुन जो प्याज का पेस्ट है, तो ये क्या होते हैं कि अगर उस अवस्था में आप तुरंत इलाज करते हो तो आपके फल जो है अच्छे से फूल आएंगे और फल भी ज्यादा लगेंगे।
0: बिल्कुल।
2: दूसरा है कि दो टाइम हमको फूल अच्छे से दिखते हैं, वो होता है शाम और सुबह। तो आप शाम और सुबह दोनों टाइम जो है अवलोकन करें, ध्यान रखें, क्योंकि जब सुबह होती है तो आपको फूल अधिक नजर आएंगे, पूरे स्पष्ट नजर आएंगे, वैसे ही शाम को भी आएंगे। तो हमें देखनी चाहिए कि ये कुछ जड़ तो नहीं रहे हैं या कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो उस तरह से फिर क्या है आप वहाँ पे ध्यान रख सकते हो। इसी तरह क्या होता है कि कुछ हमारे कीट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं फलों और फूलों दोनों के लिए।
0: बिल्कुल।
2: जैसे मधुमक्खियां हैं, अगर मधुमक्खियां आपकी बाड़ी में बैठती है तो वो आपके लिए अच्छा है, तो वो ध्यान रखिए कि आप कितने जो बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो मित्र होते हैं, जैसे मधुमक्खी है मित्र कीट है, उसी तरह एक होता शत्रु जो फूलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बिल्कुल।
2: तो उनका भी हम ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का है। दूसरा क्या है कि हमारे अगर फसल की बात करते हैं तो हमारे मेड़े हैं उस पे हमें जैसे फूल वाले पौधे होते हैं वो लगाने चाहिए, क्योंकि अगर फूल अधिक होगा तो आपकी मधुमक्खियां जैसे कीट है मित्र कीट वो बहुत अधिक बैठेंगे।
0: बिल्कुल।
2: और वो आपकी फसल को है बहुत अच्छे से जो फायदा पहुंचाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हमको जब भी आप अगर कुछ दवाई छिड़कते हो या कुछ देते हो फसल में, तो ये जरूर ध्यान रखें कि हम छिड़क रहे हैं तो वो उसकी आवश्यकता है या नहीं है, बिना आवश्यकता के हमको कुछ भी नहीं देना है।
0: बिल्कुल।
2: इसी तरह अगर जैसे आप सुरक्षा की बात करते हैं तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे फूल झड़ने लगते हैं, जैसे मिट्टी की जो नमी है अगर वो कम होगी तो आपके फूल है वो झड़ने लगेंगे। इसी तरह अगर अधिक पानी भर गया आपके खेत में तो आपके फूल और फल है उसको नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी जी।
2: अधिक गर्मी या अधिक ठंड दोनों चीजें फूलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ में जैसे हमने पोषक तत्वों की बात की थी कि अगर मिट्टी में पोषण नहीं है तो उसके कारण भी कई बार क्या होता है फूल झड़ने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कीटों का प्रकोप है वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस दौरान आप जो हमारे जो हम बात करते हैं परंपरागत जो देसी दवाइयां हैं उसका उपयोग हमें करना चाहिए।
0: जी जी।
2: इसके साथ में जो है हमने बात की थी कि पौधों को अधिक फूल या जैसे फल की बात करते हैं, तो उसमें क्या कि अगर मान लो कोई ऐसा पौधा है जिसको ज्यादा बाहर हो रहा है तो आपको उसको सपोर्ट भी करना।
0: जी जी।
2: हो सकता है ज्यादा बाहर के कारण उसकी टहनियां टूटने लगी, तो वो हम ध्यान रखना है। कभी भी रासायनिक और जो गलत कीटनाशक है वो हमें नहीं देना है, क्योंकि हमारी खेती है, हमारे पौधे हैं, हमारे घर में काम आएंगे, हम उनको खाएंगे, तो कभी भी रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है कि जो पौधों की स्थिति है उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि पौधा की ग्रोथ कैसी है, कैसे बढ़ रहा है, फूल कितने लगे हैं, कितने फूल और लग सकते हैं, तो वो सारी चीजें बारीकी से हमें देखने की जरूरत है। दूसरा एक होता है मौसम का बदलाव।
0: बिल्कुल।
2: तो मौसम के बदलाव में क्या कि हमें देखने की जरूरत होती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत गर्मी है और फिर अचानक ठंड हो गई या बारिश आ गई, तो उसमें क्या होता है कि फूल झड़ने के जो चांस ज्यादा रहते हैं, तो हमें उसको देखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि फूल झड़ने के क्या कारण है और किस तरीके से कीट और रोग की निगरानी हमारे किसान भाई बहनों को करने की जरूरत है, यही अब बात आती है कि फल बनने के बाद हमारे किसान भाई बहनों को क्या करना है और क्या नहीं करना है।
2: देखिए, अगर हम बात करते हैं कि फल बनने की, तो फल जो बनते हैं तो हमें उस दौरान दो तीन चीजें हैं जो हमने पहले भी बात की है, वो तो हमें ध्यान रखना ही है, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे आप तो फिर आपकी जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है। तो जब फल बनते हैं तो सबसे तो पहले तो ये है कि आपको उस फलों को नियमित देखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि अगर फल बन गया तो हो सकता है कि किसी प्रकार का रोग तो ना लगा, और जितने फल उसके आए हैं वो उतने फल सुरक्षित है क्या नहीं, तो वो आपको एक तो पता लगना है। दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो चाहे सब्जियों के पौधे हो चाहे वो फलों के हो, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रोग लग जाता है, एक पेड़ में, अगर रोग लग गया है, कीट लगा हुआ है, तो आप उस टहनी को काट के अलग कर दो।
0: बिल्कुल।
2: तो उससे क्या होगा कि दूसरे टहनियों में वो नहीं
0: पहुंचेगा।
2: जी, इसी तरह जैसे अधिक फल होने की स्थिति में क्या होता है, जैसे उसका बाहर की हमने बात की, तो उसको सपोर्ट के लिए आप कुछ लगा सकते हैं, जैसे पौधे की आवश्यकता अनुसार। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि अगर उसको, जैसे हमारा केला होता है, केले क्या होता है अधिक भार हो जाता है तो टूटने का चांस रहते हैं, तो उस दौरान आप लकड़ी या परंपरागत कोई भी ऐसा उपाय करें ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। इसके साथ में जो है, जैसे फल है, अगर कुछ ऐसा पौधा है कि उसके जो फल है वो अगर जमीन से संपर्क में है, मतलब टच हो रहे, तो उनको नहीं होने देना चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए। पानी जो है वो समय समय पर दे, आप कभी भी कम या ज्यादा पानी ना दें उनको, समय पर जरूरत है तो दे, नहीं तो नहीं दे।
0: बिल्कुल।
2: इसी तरह जैसे कीट है और पशु है, तो कई बार क्या कि आपके फलों को पौधों को जो पशु भी तोड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, कीट है, तो उनका प्रबंधन है जो अच्छे से करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने ये बताया कि फल बनने के बाद हमारे किसान भाई बहन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
2: जी, तो क्या नहीं करें, एक तो बिना जो है जानकारी या बिना पहचान के कोई भी कीटनाशक का उपयोग ना करें। दूसरा है, फूल आने के समय जो दवाओं का छिड़काव कभी ना करें, अगर उस स्थिति में तो खेत में है, जल भराव नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। खाद या जिससे उर्वरक की बात करते हम, तो ज्यादा नहीं डालें, आपके पौधे जल सकते हैं। जैसे पौधों की आवश्यकता है उसके अनुसार उनको आप पानी दें, पहले चेक करें मिट्टी की नमी, उसके बाद पानी दें। कुछ पौधों में रोग है तो उनको अलग कर दे, टहनियां काट कर, जैसे हमने पहले भी कहा था। और अगर फल है, फल में भी अगर किसी प्रकार का कुछ रोग लगा हो तो उस फल को तोड़ के अलग कर दे, बाहर जो है खेत से बाहर फेंक दे उसको।
0: बिल्कुल।
2: इसी तरह जो है, जो परंपरागत दवाएं हैं वो भी अधिक मात्रा में नहीं छिड़के आप, आवश्यकता लगे तो आप दें दसपनी और जिसकी हम बात करते हैं। दूसरा कि जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि जैसे दवाएं छिड़कते हैं तो उसमें क्या है कि आप किससे छिड़क रहे हो, कैसे छिड़क रहे हो, तो वो सावधानी रखनी है आप लोग।
0: बिल्कुल
2: जी।
0: तो सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है कि फल और फूल बनने की अवस्था में किस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को फसल की देखभाल करनी है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं सभी श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो फूल और फल बनने की जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, तो आप नियमित उसका अवलोकन करें, निगरानी रखें और आवश्यकता अनुसार जो है संसाधनों का उपयोग करें।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी, धन्यवाद।
0: नाइन बोनू सिम के वड़े आपने वैसे में मंगीलाल जी जुड़े तक कहा था, ये एणाए आपने घनी असल तरीका थे की घना कानी बातें बताड़ी है। आशा कर रहा हूँ की आ हंगरी बातें आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटो पड़वा, तो सूटो तो पड़ो पर साथ पहले हम रिलाय और गीत ने मोरे पड़ो सूटो।

0: जागृति बूंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बूंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बूंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बूंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों में खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि खेल बच्चे के शारीरिक विकास के लिए क्यों जरूरी है, तो बचपन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस दौरान श्रोता साथियों, बच्चों को पर्याप्त शारीरिक गतिविधि की जरूरत होती है, जैसे कि दौड़ना, कूदना, तैरना, साइकिल चलाना, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल बच्चों को सक्रिय रखते हैं। अंजलि जी,
1: जी हाँ,
0: नियमित शारीरिक गतिविधियों से बच्चों में शरीर की ताकत और फुर्ती विकसित होती है, संतुलन और तालमेल बेहतर होता है शरीर का, साथ ही मांसपेशी और हड्डियों के विकास में भी मदद मिल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बात करें दोस्तों तो शारीरिक सक्रियता की अच्छी आदत भी बच्चों में बनती है, इसलिए खेल को पढ़ाई के बाद बचा हुआ समय नहीं बल्कि बच्चे की स्वस्थ दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हमें समझना चाहिए।
1: जी हाँ, इसी के साथ कशिश बात आती है कि खेल दिमाग को सक्रिय बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर खेल को केवल शरीर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन खेल का संबंध बच्चे के मानसिक विकास से भी है।
0: बिल्कुल,
1: खेलते समय बच्चा लगातार सोचता है कि उससे

0: कहाँ जाना है, किस दिशा में दौड़ना है, किस समय गेंद पास करनी है और कैसे अपनी टीम को जीत दिलानी है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, इन छोटी छोटी परिस्थितियों में बच्चा निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना सीखता है। इसलिए खेल बच्चों में एकाग्रता, निर्णय क्षमता, रणनीति बनाने और परिस्थितियों के अनुसार प्रक्रिया देने जैसी क्षमताओं को विकसित करने में मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल
0: इसी के साथ कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि खेल बच्चों को खुश और सक्रिय रखता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के जीवन में पढ़ाई, परीक्षा और कई तरह की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन खेल उन्हें मानसिक रूप से हल्का होने का अवसर देता है। जब बच्चा दोस्तों के साथ मैदान में खेलता है, दौड़ता है और हंसता है तो उसका मन प्रसन्न होता है।
1: जी जी।
0: खेल बच्चों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर देता है। इसलिए अगर बच्चा दिन भर चिड़चिड़ा या तनाव में दिखाई दे रहा है तो केवल उसे डांटने के बजाय ये भी देखें कि उसके दिन में खेल और खुली गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय है या नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथी श्रोता साथियों, खेल का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इसमें सामाजिक विकास बच्चों का होता है। जैसे कि टीम खेलों में बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं अंजलि जी। किसी साथी को पास देना, अपनी बारी का इंतजार करना, नियम मानना, दूसरे की मदद करना और टीम की सफलता के लिए मिलकर प्रयास करना, ये सभी बातें साथियों बच्चे के व्यवहार का हिस्सा बनती है।
0: बिल्कुल,
1: और हम देखते हैं कि यही गुण आगे चलकर परिवार, विद्यालय और समाज में भी काम आते हैं। श्रोता साथियों, एक बच्चा मैदान में सीखता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम मिलकर भी जीत सकते हैं।
0: जी जी।
1: खेल का मैदान बच्चे को जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है कि हर बार जीतना संभव नहीं है। कभी बच्चा जीतेगा तो कभी हारेगा। जीत उसे खुशी देगी लेकिन हार उसे धैर्य और दोबारा प्रयास करना सिखा सकती है। अंजलि जी।
0: जी हाँ, इसी के साथ कशिश श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि खेल के अवसरों में भी समानता जरूरी है। कई बार लड़कों को मैदान में खेलने की आजादी आसानी से मिल जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा रोक टोक होती है। हमें ये सोच बदलने की जरूरत है कि बेटी को भी कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, दौड़, साइकिलिंग या उसकी पसंद के अन्य खेलों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह बेटी की रुचि नृत्य, योग, तैराकी या किसी अन्य गतिविधि में हो तो उसे भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि कशिश, खेल की कोई सीमा लिंग से तय नहीं होनी चाहिए। खेल हमेशा बच्चों के लिए ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: और हर खेल में हर बच्चे का भाग लेना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि पहले के समय से अभी के समय में सोच बहुत ज्यादा बदल गई है। आज लड़कियां जो है कबड्डी, खो खो, अलग अलग तरीके के खेल खेलती हैं और प्रतियोगिताएं जीतती भी है, जिससे माता पिता को गर्व महसूस होता है और हर माता पिता अपने बच्चों को खेल से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ कुछ माता पिता सोचते हैं कि खेल में ज्यादा समय देने से पढ़ाई प्रभावित होती है, लेकिन श्रोता साथियों, बच्चों के लिए सही रास्ता खेल और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना नहीं बल्कि दोनों में संतुलन बनाना है। इसलिए कशिश, हमें दिनचर्या इस तरीके से बनानी होगी बच्चों की कि उन्हें पढ़ाई के लिए भी समय मिले, खेल के लिए भी समय मिले, आराम और नींद के लिए भी समय मिले।
1: जी
0: क्योंकि
1: हाँ।
0: जब बच्चा व्यवस्थित दिनचर्या अपनाता है तो वह समय का महत्व भी सीख पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी कर रहे हैं और जान रहे हैं हमारे बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां और जो खेल होते हैं उनका क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी हमारी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे कि किस तरीके से पढ़ाई और खेल में हमें संतुलन बनाने की जरूरत है ताकि बच्चा जो है वो सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय निकाल पाए। आज हम देखते हैं कि बच्चों के मनोरंजन का बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर आ गया है। मोबाइल गेम, वीडियो और सोशल मीडिया बच्चों को लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने की आदत डाल सकते हैं। इसलिए घर में यह जरूरी है कि मोबाइल और स्क्रीन के साथ साथ वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को भी महत्व दिया जाए। बच्चों को बाहर खेलने दें, परिवार के साथ पैदल चलें, साइकिल चलाने का अवसर दें, खुले स्थान पर शारीरिक गतिविधियां करें। मोबाइल को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे बच्चे के पूरे खाली समय का मालिक भी नहीं बनने देना चाहिए। इस तरीके से मोबाइल और स्क्रीन के दौर में खेल किस तरीके से जरूरी है, इसका महत्व हम बच्चों को सिखा सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही इसमें माता पिता की भूमिका भी अहम है, यानी कि माता पिता खुद उदाहरण बन सकते हैं। साथियों, अगर माता पिता पूरे दिन बैठे रहते हैं तो बच्चे से कहते हैं कि जाओ खेलो, तो शायद हो सकता है कि बच्चा उतना प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर माता पिता स्वयं सुबह या शाम कुछ समय टहलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं या शारीरिक गतिविधि में भाग लेते हैं, तो बच्चा यह देखकर सीखेगा अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में परिवार सप्ताह में कुछ समय साथ टहल सकता है, मैदान जा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और पारंपरिक खेल खेल सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: इससे श्रोता साथियों शारीरिक गतिविधि के साथ साथ परिवार का आपसी जुड़ाव भी बढ़ेगा अंजलि जी। साथ ही अगर बात करें गाँव के पारंपरिक खेलों की, तो हमारे गाँव में अनेक ऐसे खेल खेले जाते हैं दोस्तों, जिनमें महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कबड्डी, गिल्ली डंडा, रस्सी कूद, लंगड़ी दौड़, पिट्ठू। ये सभी जो पारंपरिक खेल हैं, वो बच्चों को सक्रिय रखने के साथ साथ हमारी संस्कृति से भी जोड़ते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, समुदाय इन खेलों को फिर से बढ़ावा दे सकता है। गांव में छोटे खेल आयोजित किए जा सकते हैं, बच्चों को अलग अलग खेलों में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। श्रोता साथियों, इससे खेल केवल व्यक्तिगत गतिविधि नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समुदाय की खुशी और सहभागिता का माध्यम बन सकता है।
1: जी हाँ,
0: स्कूल बच्चों के जीवन में खेल की आदत विकसित करने का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विद्यालयों में केवल परीक्षा और पढ़ाई पर ध्यान न देकर बच्चों को नियमित शारीरिक गतिविधियों के अवसर भी मिलने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: इससे बच्चों को अलग अलग खेल आजमाने का अवसर दे ताकि वे अपनी रुचि पहचान सके। हर बच्चा प्रतियोगिता में जीतने के लिए नहीं खेलता, कुछ बच्चे केवल आनंद, स्वास्थ्य और दोस्ती के लिए खेलते हैं। इसलिए खेल में भागीदारी को भी महत्व दिया जाना चाहिए, केवल पुरस्कार को नहीं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों खेल के भी अपने कुछ नियम होते हैं, यानी कि जो खेल है अंजलि जी, वो बच्चों में अनुशासन पैदा करता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, समय पर मैदान में पहुंचना, अपनी बारी का इंतजार करना, नियमों का पालन करना, साथी खिलाड़ियों का सम्मान करना और अभ्यास करना, ये कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो बच्चे में अनुशासन की आदत को विकसित करती है। और यही अनुशासन बाद में पढ़ाई और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकता है अंजलि जी।
0: जी जी,
1: इसी के साथ हमारे लिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को खिलाड़ी बनाना जरूरी नहीं है। हर बच्चा प्रतियोगिता में पदक नहीं जीतेगा और न ही हर बच्चे की रुचि एक ही खेल में होगी साथियों।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हर बच्चे को अपनी उम्र

0: खेल को पढ़ाई का दुश्मन न समझे बल्कि स्वस्थ जीवन का साथी माने। श्रोता साथियों, मोबाइल और स्क्रीन के साथ वास्तविक खेल और बाहरी गतिविधियों को भी महत्व दें। इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो माता पिता जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को खेल से भी जोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बच्चों के हाथ में किताब होना जितना जरूरी है उनके पैरों का मैदान तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा बच्चों को ज्ञान देती है और खेल उसे उस ज्ञान के साथ जीवन जीने की कई जरूरी क्षमता सिखाता है।
1: बिल्कुल।
0: खेल के मैदान में बच्चा केवल दौड़ता नहीं है, वह सोचना, निर्णय लेना, सहयोग करना, नियमों का सम्मान करना, हार को स्वीकार करना और जीत के बाद विनम्र रहना सीखता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों के खेल को यह कहकर नजरअंदाज न करें कि पढ़ाई कर लो, खेलना तो बाद में भी हो जाएगा। पढ़ाई और खेल दोनों बच्चे के विकास के अलग अलग हिस्से हैं।
1: जी जी।
0: सही संतुलन ही बच्चों को स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनने में मदद करता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन की दुनिया से कुछ समय बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से छोड़ें, उन्हें मैदान दें, खुली हवा दें, दोस्तों के साथ खेलने का समय दें और सबसे बढ़कर बिना जीत की चिंता किए खेलने की खुशी दें। और अगर हमारे गांव के किसी बच्चे के पास महंगा खेल सामान नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके सपनों का मैदान भी छोटा होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: स्थानीय खेल, पारंपरिक खेल और सामुदायिक मैदान बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: एक गेंद, एक खुला मैदान, कुछ साथी और खेलने की आजादी कई बार बच्चों के स्वस्थ बचपन के लिए इतना ही काफी होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं ऐसे विषय पर जो युवाओं के जीवन को स्वस्थ, अनुशासित और नेतृत्व क्षमता से भरपूर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: जी हाँ।
1: और वो है खेल। कहा जाता है कशिश कि खेल केवल मैदान पर जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कला भी सिखाता है।
0: बिल्कुल।
1: खेल के मैदान में युवा केवल दौड़ना, खेलना या प्रतियोगिता करना नहीं सीखता, बल्कि वो अनुशासन सीखता है, धैर्य सीखता है, टीम भावना उसके अंदर प्रेरित होती है, निर्णय लेने की क्षमता जागृत होती है और नेतृत्व जैसे जीवन मूल्यों को भी वो सीख पाता है।
0: बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, हम इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से खेल और युवा स्वास्थ्य का एक महत्व है और इसमें अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुणों का संगम किस प्रकार से होता है, ये भी हम जानेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो बातें ढेर सारी होंगी जागृति जी, लेकिन शुरुआत में मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो यहाँ पर श्रोता साथियों को क्यों ना एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दे पहले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ।
0: और जैसा कि गीत से पहले विषय से भी अवगत करवाया था और हमारी बातचीत भी रही थी खेल और युवा स्वास्थ्य, अनुशासन और नेतृत्व के संगम को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो यही हमारे श्रोता साथियों को बताते हैं कि आज के समय में जब युवाओं का काफी समय मोबाइल, इंटरनेट और स्क्रीन पर बीत रहा है कशिश, ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: जी जी।
0: नियमित खेल और शारीरिक गतिविधियां युवाओं को सक्रिय रखने के साथ साथ उनके मानसिक और सामाजिक विकास में भी मदद करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं साथियों कि युवावस्था जीवन का वह समय है जब शरीर और मन दोनों तेजी से विकसित होते हैं। इस उम्र में जागृति जी स्वस्थ आदतों को अपनाना आगे के जीवन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने जैसा है।
0: बिल्कुल।
1: और हम जानते हैं कि खेल युवाओं को सक्रिय रहने का स्वाभाविक और आनंददायक माध्यम देते हैं। दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और कोई अन्य खेल हो श्रोता साथियों, हर गतिविधि शरीर को सक्रिय रखने में योगदान देती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन खेल का लाभ केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है जागृति जी। हम देखते हैं कि खेलों के माध्यम से युवा तनाव को बेहतर तरीके से संभालना, हार के बाद दोबारा प्रयास करना और चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये सीखते हैं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि खेल और अनुशासन का रिश्ता भी बहुत गहरा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि खेल और युवा स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है।
1: बिल्कुल।
0: यही अगर खेल और अनुशासन के बारे में बात करें तो एक खिलाड़ी जानता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए लगातार हमें अभ्यास करना पड़ता है। समय की पाबंदी और नियमों का पालन जरूरी है। अगर किसी युवा को रोज अभ्यास करना है तो उसे अपने समय की योजना बनानी होगी, पढ़ाई करनी होगी, आराम करना होगा, खेल और अन्य जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा।
1: बिल्कुल।
0: यही अनुशासन धीरे धीरे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। और जो युवा मैदान पर नियमों का सम्मान करना सीखता है वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझ सकता है।
1: बिल्कुल। साथी दोस्तों, हम खेल के माध्यम से टीम की भावना भी सीखते हैं।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि खेल हमें ये समझाते हैं जागृति जी कि हर काम अकेले नहीं किया जा सकता। टीम खेलों में हर खिलाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई आगे बढ़कर नेतृत्व करता है तो कोई अपनी टीम का समर्थन करता है।
0: बिल्कुल।
1: तो कोई कठिन समय में साथी का उत्साह बढ़ाता है साथियों। यहीं से युवाओं में सहयोग, सम्मान, संवाद और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि जीवन में ये गुण भी बहुत जरूरी है। परिवार हो साथियों, विद्यालय हो, कार्यस्थल हो या समाज क्षेत्र हो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि खेल नेतृत्व सीखने का एक बेहतरीन माध्यम है। मैदान में कप्तान को केवल अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देना होता है, बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है।
1: बिल्कुल।
0: एक अच्छा खिलाड़ी ये सीखता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को समझना, सही निर्णय लेना, जिम्मेदारी स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, हार के समय टीम को संभालना और जीत के समय विनम्र बने रहना भी नेतृत्व की पहचान है। और यही गुण कशिश भविष्य में युवाओं को अच्छे विद्यार्थी, जिम्मेदार नागरिक, सफल पेशेवर और प्रभावी सामाजिक नेतृत्वकर्ता बनने में मदद करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम अनुशासन, नेतृत्व और खेल युवा स्वास्थ्य के संगम को जान रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: युवा साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही थी साथियों, और गीत से पहले हम जैसा कि खेल और युवा स्वास्थ्य के बारे में जान पाए थे, हमने अनुशासन और टीम भावना के बारे में भी जाना था जागृति जी, और खेल का नेतृत्व क्षमता से क्या संबंध है ये भी हम जान पाए थे।
1: जी हाँ।
0: अब यही अगर बात करें कि खेलों में हार भी बहुत कुछ सिखाती है, तो दोस्तों खेल का सबसे सुंदर पक्ष ये भी है कि इसमें हर बार जीत नहीं मिलती, कभी जीत होती है कभी हार होती है, लेकिन दोनों परिस्थितियां युवा को कुछ न कुछ जरूर सिखाती है जागृति जी।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि जीत हमें आत्मविश्वास देती है, जबकि हार हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का अवसर देती है। एक खिलाड़ी साथियों जब हार के बाद मैदान में दोबारा उतरता है तो वह अपने भीतर धैर्य और दृढ़ता विकसित करता है। यही सोच जीवन की दूसरी चुनौतियों में भी काम आती है जागृति जी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए युवाओं को हार से डरने के बजाय उससे सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। हम देखते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट पढ़ाई, जानकारी और संवाद के लिए उपयोगी है।
0: जी जी।
1: लेकिन लगातार स्क्रीन पर रहने की आदत हमारे सक्रिय जीवन को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में खेल युवाओं को स्क्रीन से बाहर निकलकर मैदान, प्रकृति और समाज से जुड़ने का अवसर देती है।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, जरूरत इस बात की है कि युवा अपनी दिनचर्या में पढ़ाई और तकनीक के साथ साथ शारीरिक गतिविधि, खेल और पर्याप्त आराम के लिए भी समय निकाले।
0: जी हाँ।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे श्रोताओं कि खेल केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का काम करता है। कशिश, मैदान में अलग अलग परिवार, समुदाय और पृष्ठभूमि के युवा एक साथ खेलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कशिश कि खेल हमें ये भी सिखाते हैं कि हमारी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन टीम की सफलता के लिए सभी का साथ जरूरी है। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता, युवा क्लब और सामुदायिक खेल गतिविधियां युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से युवा साथियों को हम कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, खेल को केवल प्रतियोगिता या पदक पाने तक सीमित आप मत समझिए। खेल आपके व्यक्तित्व को निखारने का एक माध्यम भी है। अपने रुचि के अनुसार कोई खेल आप चुनिए, नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, नियमों का सम्मान कीजिए और अपने साथियों का उत्साह बढ़ाइए।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, हार और जीत दोनों को सकारात्मक सोच के साथ आप स्वीकार कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकताओं में जगह दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और अनुशासित जीवन ही दोस्तों मजबूत भविष्य की नींव बनाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि खेल मैदान में खेले जरूर जाते हैं, लेकिन उनके सिख जीवन के हर मैदान में काम आती है।
0: बिल्कुल।
1: खेल युवाओं को स्वास्थ्य देता है, अनुशासन सिखाता है, टीम भावना विकसित करता है और नेतृत्व के गुणों को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए श्रोताओं, मैदान में पसीना बहाने वाला युवा जीवन की चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा होना सीखता है। इसीलिए खेलिए, सीखिए, आगे बढ़िए और अपने साथ साथ अपने समाज को भी स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक बनाने में योगदान दीजिए।
0: जी हाँ।
1: खेल ही स्वास्थ्य का आधार है, अनुशासन ही जीवन का संस्कार है और नेतृत्व से हम कह सकते हैं कि हमारे युवा अपने भविष्य को शानदार बना सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि खेल केवल जीतने और हारने का माध्यम नहीं है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। खेल जो है जागृति जी, वो युवाओं को स्वस्थ शरीर के साथ साथ अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व की सीख भी देता है। आज के युवा यदि अपने दिनचर्या में खेल को थोड़ा सा स्थान भी देंगे और समय का सही प्रबंधन करेंगे, खेल भावना को जीवन में अपनाएंगे, तो वे न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि एक जिम्मेदार और सक्षम नागरिक भी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए साथियों कि स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज की पहचान होते हैं और अनुशासित युवा ही मजबूत भविष्य की नींव होते हैं।
1: जी हाँ।
0: और साथ ही नेतृत्व करने वाला युवा ही बदलाव की असली शुरुआत होता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि खेल केवल मैदान में जीतने के लिए नहीं बल्कि जीवन को जीतने की तैयारी है। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, मन को मजबूत करता है, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाता है और नेतृत्व की वो क्षमता विकसित करता है जिसकी जरूरत आज के हर युवा को है। मैदान में सीखा गया टीम वर्क, समय का सम्मान, हार से सीखना और जीत में विनम्र रहना, यही गुण आगे चलकर समाज और देश के निर्माण में काम आते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, आइए हम भी खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्वस्थ और बेहतर जीवन की आदत बनाए।
0: बिल्कुल।
1: हर युवा अपने जीवन में किसी न किसी खेल को स्थान देगा कशिश, अपने साथियों को प्रोत्साहित करेगा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा, क्योंकि
0: हाँ।
1: कहा गया है कि स्वस्थ युवा देश की ताकत है, अनुशासित युवा देश की पहचान है और जिम्मेदार युवा देश का भविष्य है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों, मैदान पर उठाया गया हर कदम स्वास्थ्य की ओर बढ़ता कदम है, अनुशासन से उठाया हर कदम सफलता की ओर बढ़ता कदम है, और नेतृत्व के साथ उठाया हर कदम समाज को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ता कदम है।
0: बिल्कुल।
1: तो उठिए, मैदान से जुड़िए, खेलिए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कशिश जब युवा स्वस्थ होगा, अनुशासित होगा और नेतृत्व करना सीखेगा, तभी समाज मजबूत होगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अब हम देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागतरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जीत से आगे जीवन की सीख, यानी कि जीत हमें खुशी देती है लेकिन जीवन की असली सीख हमें उस सफर से मिलती है जो जीत तक पहुंचाता है।
0: बिल्कुल,
1: जीवन को यदि एक यात्रा माना जाए अंजलि, तो इसमें हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। कोई परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, तो कोई समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है। श्रोताओं, इन लक्ष्यों को पाने की कोशिश में हम अक्सर जीत को ही सफलता का अंतिम पड़ाव मान लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या सचमुच जीवन केवल जीतने का नाम है? नहीं, जीवन की वास्तविक सुंदरता जीत से आगे छिपी उन सीखों में है जो हमें संघर्ष, असफलता, धैर्य, मेहनत और अनुभव से मिलती है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं जीत के आगे जीवन की सीख को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जीत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जीत हमें आत्मविश्वास देती है और हमारे प्रयासों को पहचान दिलाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, यदि जीत के साथ विनम्रता, संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान न हो तो वह जीत अधूरी रह जाती है। दूसरी ओर कई बार हारने वाला व्यक्ति भी जीवन में बहुत कुछ जीत जाता है, जैसे कि अनुभव, समझ, धैर्य और खुद को बेहतर बनाने की शक्ति।
0: जी हाँ।
1: इसलिए जीवन में केवल यह देखना जरूरी नहीं कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि उस उपलब्धि तक पहुंचते हुए हमने क्या सीखा।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जागृति जी, हम देखते हैं कि हम सामान्यतः जीत का अर्थ किसी प्रतियोगिता में प्रथम आना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या किसी लक्ष्य को हासिल करना समझते हैं, लेकिन जीत का अर्थ है इससे कहीं व्यापक। जब कोई विद्यार्थी असफल होने के बाद फिर से प्रयास करता है तो वह भी जीत रहा होता है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता तो वह भी विजेता है।
0: जी हाँ।
1: जब जागृति जी, कोई युवा अपनी गलतियों को स्वीकार करके स्वयं को सुधारता है तो यह भी एक बड़ी जीत ही है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्ची जीत तो वो है जिसके बाद इंसान का व्यक्तित्व और बेहतर बन जाए। अगर सफलता हमें अहंकारी बना दे तो वो सफलता हमारे लिए खतरा बन सकती है, लेकिन अगर सफलता हमें विनम्र और जिम्मेदार बनाए तो वही सफलता जीवन को सार्थक बनाती है। जीत का सबसे सुंदर रूप वो है जिसमें व्यक्ति खुद से बेहतर बनकर लूटे। किसी भी सफलता के पीछे एक लंबा सफर होता है, उस सफर में मेहनत होती है, त्याग होता है, इंतजार होता है और कई बार निराशा भी होती है। जब मंजिल मिल जाती है तो लोग अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन उस परिणाम के पीछे छिपी मेहनत और संघर्ष ही व्यक्ति को वास्तविक रूप से मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए दोस्तों कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, अंजलि उसकी उपलब्धि निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि उसने समय का सदुपयोग करना, नियमित अध्ययन करना, कठिन विषयों से न डरना और अनुशासन में रहना सीखा। ये सीख उसके जीवन में परीक्षा के परिणाम से कहीं अधिक लंबे समय तक उसके साथ रहती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमें अपने जीवन के सफर का सम्मान करना चाहिए। मंजिल महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें वो इंसान बनाता है जो हम आगे चलकर बनते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति जीतना चाहता है, लेकिन हर बार जीत संभव नहीं होती है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल।
1: कभी परीक्षा में अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आता तो कभी प्रतियोगिता में हार मिलती है, कभी नौकरी या अवसर हाथ से निकल जाता है तो कभी हमारी योजना सफल नहीं होती। ऐसे समय में जागृति जी, निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन हार को जीवन का अंत मान लेना गलत है, क्योंकि हार हमें अपनी कमियों को पहचानने का अवसर देती है। जीत हमें बताती है कि क्या सही किया, लेकिन हार अक्सर ये बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि हार के बाद यदि हम स्वयं से पूछें कि मैं कहाँ चुका, मैं क्या बेहतर कर सकता था, अगली बार मुझे क्या बदलना चाहिए, तो हार हमारे लिए शिक्षक बन जाती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जागृति जी, असफलता से हम सभी को भागना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता को समझना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और फिर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं कि जीत से आगे की सबसे बड़ी सीख क्या होती है। तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हार भी हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। इसी के साथ अब बात आती है धैर्य की। श्रोता साथियों, आज के समय में हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है। हम चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है जागृति जी कि हर अच्छी चीज को समय लगता है। बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं बनता, उसी तरह मेहनत करने के बाद सफलता भी हमेशा तुरंत नहीं मिलती। धैर्य हमें कठिन समय में टिके रहना सिखाता है। जब परिणाम देर से मिलता है तब धैर्य ही हमें निराश होने से बचाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है श्रोता साथियों, यकीन मानिए कि वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है। युवाओं के लिए सीख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जागृति जी, कि सोशल मीडिया और तेज जीवन शैली के दौर में हमारे अंदर सफलता को बहुत जल्दी पाने की इच्छा बढ़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि धीमी गति से चलना असफलता नहीं है, रुक जाना असली हार है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जीत के पीछे सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मेहनत है। प्रतिभा व्यक्ति को शुरुआत में आगे बढ़ा सकती है, लेकिन निरंतर मेहनत ही उसे लंबे समय तक सफलता दिलाती है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि एक साधारण युवा लगातार अभ्यास करके उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। एक सामान्य खिलाड़ी नियमित प्रशिक्षण से बेहतर खिलाड़ी बन सकता है। एक छोटा सा प्रयास भी अगर रोज किया जाए दोस्तों, तो समय के साथ बड़ा परिणाम हमें दे सकता है। मेहनत हमें केवल सफलता नहीं देती बल्कि अनुशासन आत्मनिर्भरता भी सिखाती है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए आपको कहना चाहेंगे कि जब भी सफलता मिले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस सफलता के पीछे कितने छोटे छोटे प्रयास जुड़े हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जितना जितना महत्वपूर्ण है जीत के बाद विनम्र बने रहना, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि सफलता मिलने के बाद यदि व्यक्ति दूसरों को छोटा समझने लगे तो उसकी उपलब्धि का मूल्य कम हो जाता है। वास्तविक विजेता वह है श्रोता साथियों, जो जीतने के बाद अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: जी हाँ।
0: वो अपने माता पिता, शिक्षकों, साथियों और उन सभी लोगों को याद रखे जिन्होंने उसके सफर में उसका साथ दिया। विनम्रता व्यक्ति को बड़ा बनाती है। ऊंचाई पर पहुँच कर भी जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही वास्तव में जीवन में सफल कहलाता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जीवन हमें यह भी सिखाता है जागृति जी कि हर बार जीत हमारी ही नहीं होगी। कभी हमारा मित्र आगे निकलेगा तो कभी हमारा सहकर्मी सफल होगा।
1: जी हाँ।
0: और कभी कोई दूसरा व्यक्ति वह अवसर प्राप्त करेगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। ऐसे समय में श्रोता साथियों, ईर्ष्या करने के बजाय दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना चाहिए। किसी दूसरे की जीत हमारी हार नहीं होती। दुनिया में सफलता के अवसर सीमित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा और अपनी मंजिल अलग अलग होती है। दूसरों की सफलता पर खुश होना हमारे व्यक्तित्व की परिपक्वता को दर्शाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके पद, पुरस्कार या उपलब्धियों से नहीं होती। उसकी वास्तविक पहचान तो उसके चरित्र से होती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई व्यक्ति बहुत सफल है लेकिन झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है या अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता अपनाता है, तो उसकी सफलता समाज के लिए प्रेरणादायक नहीं बन सकती।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, इसके विपरीत एक साधारण व्यक्ति यदि ईमानदार, मेहनती, संवेदनशील और जिम्मेदार है तो वह समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जीवन में लक्ष्य केवल सफल होना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सफलता के साथ अच्छे इंसान भी बने। कई बार हम देखते हैं अंजलि कि सफलता की दौड़ में हम अपने परिवार और रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमें लगता है कि अधिक पैसा, बड़ा पद और बड़ी उपलब्धि ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन श्रोताओं, समय के साथ समझ आता है कि जीवन की असली संपत्ति हमारे रिश्ते हैं। परिवार का सहयोग, माता पिता का आशीर्वाद, मित्रों का साथ और समाज का विश्वास, इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें अपने रिश्तों के लिए भी समय निकालना होगा। ऐसी जीत का क्या लाभ जिसमें हमारे साथ खुशियां बांटने वाला कोई न हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सफलता केवल अधिकार नहीं देती बल्कि जिम्मेदारी भी देती है।
1: जी हाँ।
0: यदि किसी विद्यार्थी ने अच्छी सफलता प्राप्त की है तो वह अपने साथियों की मदद कर सकता है। यदि कोई युवा अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। हमारी उपलब्धियां तभी सार्थक होंगी श्रोता साथियों, जब उसमें किसी व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। जो सफलता केवल हमें ऊपर उठाए वह उपलब्धि है, लेकिन जो सफलता दूसरों को भी ऊपर उठाए वही प्रेरणा है। क्योंकि जीत की चाह अच्छी है, लेकिन हर समय प्रतियोगिता में रहना उचित नहीं होता है। जीवन केवल पढ़ाई, नौकरी, पैसा या पुरस्कार का नाम नहीं है। जीवन में स्वास्थ्य, परिवार, मित्रता, प्रकृति, सेवा, आनंद और आत्मिक शांति भी बहुत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों के साथ जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। हर दिन खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम केवल सफल होने के लिए ही दौड़ रहे हैं या खुश और संतुलित जीवन भी जी रहे हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज का युवा ऊर्जा, प्रतिभा और संभावनाओं से भरा हुआ है, उसके सामने अवसरों की कोई कमी नहीं है।

0: विश्वास देती है और हार हमें सुधारना सिखाती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, धैर्य हमें टिके रहना सिखाता है और अनुभव हमें समझदार बनाता है। हमें ऐसी जीत की तलाश करनी चाहिए जो केवल पुरस्कार या प्रशंसा तक सीमित न हो, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाए। ऐसी सफलता प्राप्त करनी चाहिए श्रोता साथियों जिसमें मेहनत हो, ईमानदारी हो, विनम्रता हो और दूसरों के लिए संवेदना हो। क्योंकि जागृति जी, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी प्रतियोगिता में प्रथम आना नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, आलस्य, अहंकार और निराशा पर विजय पाना है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जब भी जीवन में जीत मिले तो श्रोता साथियों उसे विनम्रता से स्वीकार करें, जब हार मिले तो उससे सीखें, जब रास्ता कठिन हो तो धैर्य रखें और जब मंजिल दूर दिखाई दे तो अपना कदम रोके नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि जीत एक पल की खुशी दे सकती है लेकिन जीत तक पहुंचने का सफर जीवन भर की सीख दे जाता है और यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो इंसान है जो हम उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि जीत पर रुकिए मत, जीत से सीखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
0: बिल्कुल। तो जागृति, जिस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम जान पाए कि जीत से आगे जीवन की क्या सीख है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: बिल्कुल।
0: आशा करते हैं श्रोता साथियों कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही सच्चा स्वराज कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन तकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
5: नाना अंजलि बुन हूँ था का।
4: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
4: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो और आपका पसंदीदा कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। हाजिर हो गई हूं साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर। दोस्तों, जब हम अपने सपनों की बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि सपना देखो, मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। लेकिन आज हम सपनों की उड़ान में सफलता की एक ऐसी चाबी की बात करेंगे जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह चाबी है सही सवाल पूछने की कला। जी हाँ, कभी कभी हमारी जिंदगी में बदलाव किसी बड़े जवाब से नहीं बल्कि एक सही सवाल से शुरू होता है। जब एक बच्चा पूछता है कि आसमान नीला क्यों है, एक किसान पूछता है कि अगर पानी कम इस्तेमाल करके खेती करूं तो क्या कोई बेहतर तरीका है, एक युवा पूछता है कि मैं जिस काम में अच्छा हूं उससे अपने लिए अवसर कैसे बना सकता हूं, एक लड़की पूछती है कि अगर मेरे परिवार में किसी ने यह काम नहीं किया तो क्या मैं इसकी शुरुआत कर सकती हूं। श्रोता साथियों, ये सवाल छोटे लगते हैं लेकिन कई बार यही सवाल हमें उस रास्ते तक पहुंचाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। तो आज का सवाल है कि क्या सही सवाल पूछना भी एक हुनर है, और अगर है तो हम इसे कैसे सीख सकते हैं। बातें इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक सही सवाल पूछना भी एक हुनर है। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि एक गांव में रवि नाम का एक युवा रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रवि पढ़ाई पूरी करने के बाद काम की तलाश कर रहा था। श्रोता साथियों, एक दिन वह गांव के बाहर एक दुकान पर बैठा था। वहां उसने देखा कि एक आदमी अपने मोबाइल से कई लोगों से बात कर रहा था और कुछ सामान की जानकारी ले रहा था। रवि ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि वह गांव के लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीद कर दूसरे शहरों में बेचता है। आरव ने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, क्या हमारे गांव के लोग भी अपना सामान आप तक पहुंचा सकते हैं? उसने कहा, बिल्कुल, लेकिन उन्हें सही गुणवत्ता, पैकिंग और बाजार की जानकारी होनी चाहिए। रवि के मन में तीसरा सवाल आया। उसने पूछा, अगर मुझे ये जानकारी नहीं आती तो मैं इसे सीख सकता हूँ? जवाब मिला, हाँ। तो दोस्तों, बस रवि के पास उस दिन कोई नौकरी नहीं आई। उसे कोई बड़ा पैसा भी नहीं मिला, लेकिन उसे एक नया रास्ता दिखाई दे गया। और वह रास्ता सिर्फ इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उसने सवाल पूछा, और यही सवालों की ताकत होती है। यही बात आती है कि सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सवाल का मतलब है मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन सवाल इससे कहीं ज्यादा होते हैं। सवाल हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी युवा को नौकरी नहीं मिल रही, फिर वो सोचता है कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही। ये सवाल उसे अपनी समस्या के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर वह पूछे कि मैं नौकरी पाने के लिए अपने अंदर कौन सी नई क्षमता विकसित कर सकता हूँ, तो उसका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर जाए। पहला सवाल परेशानी खोज रहा था और दोस्तों वही दूसरा सवाल रास्ता खोज रहा था। यही अंतर सही सवाल और सामान्य सवाल के बीच होता है। जी हाँ, सवाल हमारे नजरिए को बदलते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना काम कैसे शुरू करूं? अब इसी बात को दूसरे तरीके से पूछिए, कम पूंजी में मैं कौन सा काम शुरू कर सकता हूँ? समस्या वही है, लेकिन सवाल बदल गया। और सवाल बदलते ही सोच बदल गई। पहले ध्यान था मेरे पास क्या नहीं है, अब ध्यान है मेरे पास जो है उससे मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमारे पास तुरंत जवाब नहीं होता, लेकिन अगर सही सवाल पूछना सीख जाए हम, तो जवाब खोजने की दिशा जरूर मिल सकती है। तो श्रोता साथियों, बातें इसी तरह कार्यक्रम में और भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सही सवाल पूछने का जो एक तरीका है वो भी एक हुनर है। जी हाँ दोस्तों, हर सवाल उपयोगी नहीं होता। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा ही क्यों असफल होता हूँ, ये सवाल व्यक्ति को निराशा की ओर ले जा सकता है। इसकी बजाय पूछिए कि पिछली बार मुझसे कौन सी गलती हुई और मैं उससे अगली बार कैसे सुधार सकता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि पहला सवाल जो है उसमें दोष है और दूसरे में सीख। इसी तरह लोग मुझसे आगे क्यों निकल गए की जगह मुझे आगे बढ़ने के लिए अभी क्या सीखना चाहिए। मेरे पास मौका क्यों नहीं आता की जगह मैं अपने लिए अवसर कैसे खोज सकता हूँ। कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता की जगह मैं किससे और किस तरह मदद मांग सकता हूँ का सवाल हमारे जीवन को बदल देता है। श्रोता साथियों, सवाल बदलते ही हमारा दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। इसलिए हमें इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। सपनों की उड़ान और सही सवाल हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आया होगा कि सपनों की उड़ान, सही सवाल, इन दोनों का क्या लेना देना है। तो दोस्तों, बहुत गहरा संबंध है। किसी भी सपने की शुरुआत में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती, जैसे कि

मान लीजिए कि कोई युवा अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे सवाल पूछने होंगे, मुझे किस काम की जानकारी है, मेरे क्षेत्र में लोगों की जरूरत क्या है, मेरे पास कितनी पूंजी है, मुझे और क्या सीखना होगा, मेरे ग्राहक कौन होंगे, शुरुआत छोटी कैसे की जा सकती है, इस काम में जोखिम क्या है, कौन मेरी मदद या मार्गदर्शन कर सकता है। ये सवाल उसके सपनों को कल्पना से योजना में बदलते हैं और यही सपनों की उड़ान का असली मतलब है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की दुनिया सवालों से भरी होती है, ये क्यों, ऐसा कैसे, अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन कई बार हम बच्चों से कहते हैं बहुत सवाल मत पूछो, तो धीरे धीरे बच्चा सवाल पूछना ही बंद कर देता है और जब सवाल खत्म होते हैं तो कई बार जिज्ञासा कम होने लगती है। बच्चों को हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी उनसे कहना चाहिए तुम्हें क्या लगता है, इससे बच्चे खुद सोचना सीखते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा पूछे कि पौधे को पानी क्यों चाहिए, तो सिर्फ जवाब देने की जगह पूछिए, अगर पौधे को कई दिन पानी न मिले तो क्या होगा, तुमने कभी ऐसा पौधा देखा है। अब बच्चा केवल जवाब नहीं सुन रहा, वह सोच रहा है कि यही सवाल पूछने की आदत आगे चलकर उसके सीखने की क्षमता को मजबूत कर सकती है। श्रोता साथियों, सवाल केवल पढ़ाई या नौकरी के लिए नहीं होते, हमारे किसान भाई बहन भी सही सवाल पूछकर अपने काम में नई जानकारी जोड़ सकते हैं, जैसे कि इस फसल में कौन सी समस्या है से आगे बढ़कर इस समस्या का कारण क्या हो सकता है और उसकी पुष्टि कैसे करूं? यह बीज अच्छा है कि जगह, मेरी जमीन, मौसम और पानी की उपलब्धता के हिसाब से कौन सा बीज उपयुक्त रहेगा। ऐसा सवाल किसानों को अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रोता साथियों निर्णय लेने में मदद करता है। जरूरी यह है कि सवाल विशिष्ट और परिस्थिति से जुड़ा हुआ हो। जी हाँ, अब यही आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम सही सवाल कैसे पूछें? तो दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जिसका पहला तरीका है क्यों पूछिए, कि किसी समस्या को समझने के लिए पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक बार क्यों पूछकर रुकिए मत, कई बार समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए बार बार कारण समझना पड़ता है। दूसरा तरीका कैसे पूछिए, ये क्यों नहीं हो रहा के साथ पूछिए कि इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्यों समस्या समझने में मदद करता है और कैसे जो है वो समाधान खोजने में। तीसरा तरीका है अगर ऐसा हो तो, यह सवाल कल्पना और संभावनाओं को जन्म देता है, जैसे कि अगर हम यह काम गांव के 10 युवाओं के साथ मिलकर करें तो, अगर इस उत्पाद को दूसरे बाजार तक पहुंचाए तो, अगर इस पुराने हुनर को नए डिजाइन के साथ पेश करें तो, कई नए विचार ऐसे ही सवालों से पैदा होते हैं। इसी के साथ चौथा तरीका है अब मुझे क्या सीखना चाहिए। यह सवाल श्रोता साथियों बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह हमें अपनी कमी पर रुकने के बजाय सीखने की दिशा देता है। पांचवा तरीका है किससे सीख सकता हूँ। तो दोस्तों हर चीज खुद सीखना जरूरी नहीं है, किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछिए, किसी विशेषज्ञ से पूछिए, किसी सफल व्यक्ति के अनुभव से सीखिए, प्रशिक्षण या विश्वसनीय जानकारी तलाशिए। सवाल पूछना दोस्तों कोई कमजोरी नहीं है, सीखने की इच्छा का संकेत है। यही अब बात आती है कि बहुत सी बार हमें सवाल पूछने में झिझक होती है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग इन सारी चीजों को लेकर डर महसूस करते हैं, ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरा सवाल बेवकूफी वाला हुआ तो, अगर सबको जवाब पता हुआ तो, मुझे नहीं पता हुआ तो। लेकिन याद रखिए कि जिसे नहीं पता और वह पूछता है तो वह सीख रहा है, जिसे नहीं पता और वो पूछने से डरता है तो वहीं खड़ा रह सकता है। दोस्तों एक अच्छा सवाल पूछने में शर्म नहीं होनी चाहिए, हाँ सवाल पूछने का तरीका सम्मानजनक होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों कहना चाहेंगे कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ सवालों के जवाब किताबों में मिलते हैं, तो कुछ सवालों के जवाब किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलते हैं, तो कुछ सवालों के जवाब हमारे अनुभव देते हैं, और वहीं कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए हमें खुद रास्ते पर चलना पड़ता है। इसलिए सवाल पूछने से डरिए मत, क्योंकि सवाल जिज्ञासा पैदा करते हैं, जिज्ञासा सीखने की शुरुआत करती है और सीख समझ पैदा करती है, और समझ सही फैसले लेने की ताकत देती है। हो सकता है कि आज आपके मन में भी कोई एक सवाल हो जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, उसे दबाइए मत, उसे
देखिए, उसके बारे में सोचिए, सही व्यक्ति से पूछिए, जानकारी खोजिए और फिर पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपके सपनों की उड़ान शायद किसी बड़े मौके से नहीं बल्कि आपके मन में उठे एक सही सवाल से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, जिंदगी बदलने वाले जवाब हमेशा तैयार नहीं मिलते, लेकिन सही सवाल हमें उन जवाबों तक जरूर पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है?
0: बिल्कुल।
1: क्या आपने महसूस किया है कि मैदान में खेलते समय हम जीतने के साथ साथ हार को स्वीकार करना, दोबारा प्रयास करना और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना भी सीखते हैं? इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 29 अगस्त यानी आज के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
0: जी हाँ,
1: यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र ने भारतीय हॉकी को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई और उनकी खेल प्रतिभा और अनुशासन आज भी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दे।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी थी कि आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारत एक विशाल और विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृति और परंपराओं को मनाने वाले लोग रहते हैं। श्रोता साथियों, भारत में शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, कला, साहित्य और अनेक क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। हम देखते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी श्रोता साथियों भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे देश के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रोता साथियों प्रदर्शन करके भारत का नाम रोशन किया है। खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि श्रोता साथियों ये हमारे शरीर मन को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। खेलों में अनुशासन, आत्मविश्वास, मेहनत, सहयोग और नेतृत्व जैसे गुण होते हैं साथियों।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस केवल एक खिलाड़ी को याद करने का दिन नहीं है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के व्यक्ति के लिए शारीरिक गतिविधि जरूरी है। पहले गाँव में बच्चे खुले मैदान में कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, कुश्ती और दौड़ जैसे खेल खेला करते थे, जो कि जीवन का वास्तविक हिस्सा थे। लेकिन आज मोबाइल फोन, टेलीविजन, इंटरनेट में बढ़ते इस्तेमाल के कारण बच्चों का काफी समय स्क्रीन के सामने बीतने लगा है। इससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है। ऐसे समय में राष्ट्रीय खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में खेल और व्यायाम के लिए समय जरूर निकालना चाहिए।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस का नाम लेते ही सबसे पहले जिस महान खिलाड़ी का स्मरण होता है वे है मेजर ध्यानचंद।
0: जी हाँ,
1: ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उन्होंने हॉकी में अपनी अद्भुत प्रतिभा से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उनकी गेंद पर नियंत्रण, खेल की समझ और इतनी शानदार थी कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के साथ ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया, भारत को गौरवान्वित किया। उनका जीवन मनीषा हमें सिखाता है कि प्रतिभा के साथ साथ नियमित अभ्यास, अनुशासन, धैर्य और समर्पण भी सफलता के लिए जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: उनकी सफलता जो है वो अचानक उन्हें नहीं मिली थी, उसके पीछे वर्षों का अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण था। यही संदेश आज के बच्चों और युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी लगातार करनी होगी।
0: बिल्कुल श्रोता साथियों, इसी के साथ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह श्रोता साथियों हमें खेलों के महत्व को समझने का अवसर देता है। आज के समय में अंजलि जी, हम देखते हैं कि बच्चे और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और टेलीविजन में अधिक समय बिताता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में श्रोता साथियों खेलों का महत्व है वो हमारे लिए और भी बढ़ जाता है। खेल हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। नियमित रूप से श्रोता साथियों खेल खेलने से शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति है वो बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: खेलों से मोटापा, आलस्य और कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है वो हमें नहीं होती है। हम देखते हैं कि खेल मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी श्रोता साथियों लाभकारी होता है। खेल खेलने से तनाव कम होता है, मन प्रसन्न रहता है, साथ ही हमारा आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है और श्रोता साथियों व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना है वो भी आसानी से कर पाता है। इसलिए साथियों कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस हमें यह संदेश देता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों की रुचि जो है वो खेल में होती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम बच्चों को खेल में आगे बढ़ाते हैं, उन्हें अच्छे से प्रोत्साहन देते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है।
0: जिससे
1: शारीरिक गतिविधि होती है, बच्चों का मानसिक विकास अच्छा रहता है और साथ ही हम देखते हैं कि हम हमारे पसंद की जब चीज करते हैं तो हम तनाव से भी दूर रह पाते हैं। और अभी के समय में हम देखते हैं कि किसी भी उम्र में बच्चों से लेकर बड़ों तक को तनाव हो जाता है, वो किसी भी कारण हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में तनाव से दूर रहने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि हम अपने आप को व्यस्त रखें, खेल खेलें और खेल खेलने से मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि अगर हम खेल खेलते हैं तो हमें इससे कई सारे लाभ मिलते हैं श्रोता साथियों। सबसे पहला लाभ तो यह है कि खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है।
1: बिल्कुल,
0: दौड़ना, तैरना, करना, साइकिल चलाना, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और अन्य जो श्रोता साथियों खेल होते हैं वो हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। हम देखते हैं कि खेलों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बेहतर होती है। नियमित शारीरिक गतिविधियों से श्रोता साथियों हमारे शरीर की ऊर्जा है वो बनी रहती है और हमारा शरीर है वो अधिक सक्रिय महसूस करता है। साथ ही साथियों खेल मानसिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेल खेलते समय श्रोता साथियों खिलाड़ी को तेजी से निर्णय लेने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है और हम देखते हैं कि इन सबसे हमारी निर्णय लेने की क्षमता है वो भी हमारी मजबूत होती है। साथ ही श्रोता साथियों खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी श्रोता साथियों समय पर अभ्यास करता है, अपने प्रशिक्षण की बात सुनता है और नियमों का पालन करता है। इससे श्रोता साथियों हमारे जीवन में अनुशासन आता है। साथ ही साथियों हम देखते हैं कि खेल हमें हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाता है। जीत मिलने पर श्रोता साथियों हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और हार मिलने पर निराश भी नहीं होना चाहिए। हार से हमें अपनी गलतियों को पहचानना और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ये बातें और भी आगे निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि खेल हमारे शरीर और मन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
1: नियमित
0: खेल खेलने से शरीर सक्रिय रहता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर में चुस्ती आती है और हमारी कार्य क्षमता बेहतर होती है। लेकिन खेल का लाभ केवल शरीर तक सीमित नहीं है, खेल हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। मैदान में खिलाड़ी को कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्रोता साथियों, हार के बाद वह दोबारा अभ्यास करता है और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। यही सीख जीवन में भी काम आती है। हार अंत नहीं है बल्कि आगे बेहतर करने का अवसर है। श्रोता साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमें बेटियों की खेलों में भागीदारी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रतिभाशाली बेटियां ऐसी हैं मनीषा, जिन्हें खेलना पसंद है, लेकिन परिवार संसाधनों की कमी और सामाजिक सोच के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता।
1: जी हाँ,
0: हमें समझने की जरूरत है श्रोता साथियों कि खेल किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। बेटियों को भी खेलने का जो चीज है वो हमें देने की जरूरत है। जैसे कि बेटियों को भी हम दौड़ने दें, कबड्डी खेलने दें, कुश्ती करने दें, तीरंदाजी करने दें, हॉकी का जो खेल है वो खेलने दें और देश का नाम रोशन करने दें। जरूरत हमें है कि हम केवल बच्चों को अवसर दें, प्रोत्साहन दें और सुरक्षित वातावरण दें। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की रुचि को समझे। अगर बेटा बेटी किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें और उसमें उसे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। क्योंकि कोई भी चीज हो, अगर हम हमारे जीवन में, अगर हमारे मन को जो चीज सुकून देती है अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जीवन हमें अधूरा लगेगा। ऐसे ही बचपन से ही हमें बच्चों की रुचि को देखकर, उनकी बातों को समझकर हमें उन्हें आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि खेल ही वो हमारे शरीर को ही स्वस्थ नहीं बनाते हैं साथियों, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खेलों के माध्यम से बच्चों में सहयोग की भावना विकसित होती है। श्रोता साथियों, टीम में खेलों में सभी खिलाड़ियों को मिलकर एक साथ खेलना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि इससे टीम वर्क की भावना है वो भी विकसित होती है।
0: बिल्कुल,
1: खेल नेतृत्व की भावना भी पैदा करता है साथियों। हम देखते हैं कि कप्तान को अपनी टीम का नेतृत्व करना होता है और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना होता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे हम देखते हैं कि अंजलि जी, नेतृत्व की जो क्षमता है उसका भी विकास होता है। साथियों, साथ ही कहना चाहेंगे कि खेल हमें ईमानदारी और खेल भावना भी सिखाते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी नियमों का पालन करता है और अपने विरोधी का सम्मान करता है। खेल भावना का अर्थ श्रोता साथियों कि हम जीतने की कोशिश करें लेकिन अपने विरोधी के प्रति हमें सम्मान भी व्यक्त करना है। साथ ही अंजलि जी, बात करें कि विद्यार्थी के जीवन में खेलों का क्या महत्व है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय हम देखते हैं कि उसके शरीर, मन और व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए श्रोता साथियों, विद्यार्थियों के लिए खेलों की आवश्यकता है वो बहुत अधिक है। केवल किताबों में पढ़ने बढ़ते तक रहने तक हमें पर्याप्त नहीं रहना है साथियों। यदि विद्यार्थी पूरे दिन पढ़ाई करता रहे और शारीरिक गतिविधियां न करे तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि थकान और तनाव महसूस हो सकता है। खेल श्रोता साथियों उसके शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा करता है। साथ ही श्रोता साथियों, खेलों से विद्यार्थियों में एकाग्रता की शक्ति होती है वो बढ़ती है। जब शरीर स्वस्थ रहता है साथियों तो पढ़ाई में ध्यान भी सही तरीके से लगता है। खेल विद्यार्थियों को समय का सही उपयोग करना सिखाता है, अनुशासन सिखाता है और साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि विद्यार्थी है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। विद्यार्थियों में खेलों को पढ़ाई के साथ खेलों को भी महत्व देना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी खेल को खेलना चाहिए और उसमें प्रोत्साहित होना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी तरीके से

0: साथियों को कहना चाहेंगी कि हमारे गांव में खेलों की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। कबड्डी, खो खो, कुश्ती, दौड़, तीरंदाजी जैसे खेल ग्रामीण जीवन का हिस्सा रहे हैं। इन खेलों के लिए हमेशा महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। गाँव में उपलब्ध मैदान और सामुदायिक स्थानों का उपयोग करके बच्चों और युवाओं के लिए खेल गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। ग्राम पंचायत, विद्यालय, युवा समूह और समुदाय मिलकर खेल प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कबड्डी प्रतियोगिता, खो खो, दौड़, रस्सी कस्सी, लंबी दौड़, तीरंदाजी, पारंपरिक ग्रामीण खेल, ऐसी गतिविधियां बच्चों और युवाओं को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालकर मैदान से जोड़ सकती है। श्रोता साथियों, आज मोबाइल हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है। मोबाइल से पढ़ाई, जानकारी और मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब स्क्रीन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होने लगे। बच्चों का घंटों मोबाइल पर गेम खेलना, वास्तविक शारीरिक गतिविधियों से दूर रहना अच्छी आदत नहीं है। इसलिए परिवार में एक सरल नियम बनाया जा सकता है कि कुछ समय पढ़ाई के लिए, कुछ समय मोबाइल के लिए और कुछ समय खेल के लिए। माता पिता स्वयं बच्चों के साथ मैदान में जाएं तो बच्चे खेलों के प्रति अधिक रुचि दिखा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि खेलों और स्वास्थ्य का क्या संबंध है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज की आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक गतिविधियों का महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों का जीवन पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो गया है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग काम करते हैं वो मशीनों, तकनीकी के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। इसके कारण श्रोता साथियों हम देखते हैं कि लोगों की शारीरिक गतिविधियां हैं वो कम होती जा रही हैं। बच्चे भी पहले की तुलना में बाहर कम खेलते हैं, वे मोबाइल फोन और वीडियो गेम में अंजलि जी हम देखते हैं कि अधिक समय बिताते हैं। इससे श्रोता साथियों उनकी शारीरिक जो सक्रियता है वो कम होती जा रही है। इस स्थिति में श्रोता साथियों खेलों को जीवन का हिस्सा बनाना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। प्रतिदिन श्रोता साथियों कुछ समय खेलना, दौड़ना, योग करना या कोई अन्य जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकती हैं। इसीलिए साथियों कहना चाहेंगे कि खेलों से हमारे शरीर की ऊर्जा है वो बढ़ती है, हमारा मन प्रसन्न रहता है। इसीलिए साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस का संदेश केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हम जान पा रहे हैं और उन्हें बता पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर, यही अगर बात करें खेलों में अनुशासन के महत्व की, तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि खेल और अनुशासन का बहुत गहरा संबंध है। कोई भी खिलाड़ी बिना अनुशासन के लंबे समय तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। खिलाड़ी को नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है, उसे अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ता है, आराम और प्रशिक्षण का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम देखते हैं कि खिलाड़ी को समय का महत्व समझना होता है, उसे अपने प्रशिक्षण के निर्देश हैं उनका पालन करना होता है, और साथ ही खेलों के जो नियम हैं उनका सम्मान करना होता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए खेलों से सीखा गया अनुशासन विद्यार्थी और साथ ही जो भी व्यक्ति है उसमें व्यक्तिगत और व्यवसायिक जो अनुशासन होता है वो पैदा करता है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि खेल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हार और जीत दोनों का सामना हमें समान भावना से करना चाहिए। प्रत्येक खिलाड़ी जीतना चाहता है, लेकिन हर प्रतियोगिता में जीत संभव नहीं होती है। साथियों, हार से हमें निराश नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथियों, हार हमें अपनी कमजोरियों को समझने का अवसर देती है। हम देखते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी अपने हार से सीखता है और अपनी प्रतियोगिताएं जो होती है उनके लिए अच्छी मेहनत करना सीखता है।
1: बिल्कुल मनीषा, खेल हमें तनाव से निपटने में भी मदद करता है। जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं या कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो सक्रिय होता है और मन भी तरोताजा महसूस करता है। खेल बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है। जब कोई बच्चा पहली बार दौड़ में भाग लेता है, मंच पर पुरस्कार प्राप्त करता है या अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसके अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यही आत्मविश्वास भविष्य में पढ़ाई, नौकरी और जीवन की दूसरी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, खेल हमें अनेक अकेले आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे टीम खेलों में हर खिलाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: एक खिलाड़ी मनीषा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन पूरी टीम की सफलता के लिए सभी खिलाड़ियों का सहयोग जरूरी होता है। और यही बात हमारे समाज पर भी लागू होती है।
0: जी हाँ,
1: जब गाँव के लोग मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी आसानी से होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए खेल केवल मैदान में टीम भावना नहीं सिखाते बल्कि समाज में भी सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं साथियों कि राष्ट्रीय खेल दिवस हमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। यह हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए प्रतिभा के साथ साथ मेहनत और अनुशासन की भी हमें जरूरत होती है।
1: बिल्कुल,
0: मेजर ध्यानचंद का श्रद्धा साथियों, जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए। लगातार अभ्यास और मेहनत से व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को निखारता है। श्रोता साथियों, यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। पढ़ाई और काम के साथ साथ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए साथियों, व्यायाम और खेल हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने चाहिए। इसलिए श्रोता साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस हमें देश के खिलाड़ियों का सम्मान करना और उनके मेहनत को समझना और खुद को भी मेहनत की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें श्रोता साथियों से तो श्रोता साथियों, बच्चों को खेलों से जोड़ने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता बच्चों के लिए समय निकालते हैं। अगर आसपास मैदान है तो बच्चों को वहाँ खेलने के लिए हमें भेजना है। घर में खेलों को केवल समय की बर्बादी न समझें। अगर बच्चा पढ़ाई के साथ खेल में भी रुचि रखता है तो उसके संतुलन को बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही बच्चों को खेल के दौरान सुरक्षा के नियमों का पालन करना भी हम सिखाएं। पर्याप्त पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें। मौसम के अनुसार सावधानी रखने की सीख भी हम बच्चों को दें। साथियों, खेलों को बढ़ावा देने के लिए केवल खिलाड़ी या परिवार की जिम्मेदारी नहीं, पूरा समुदाय इसमें भूमिका निभा सकता है। गांव में उपलब्ध खुले स्थानों को सुरक्षित और साफ रखा जाए। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हों। स्कूल और पंचायत मिलकर बच्चों के लिए खेल दिवस आयोजित कर सकते हैं। युवा स्वयंसेवक छोटे बच्चों को खेल सिखा सकते हैं और इसी के साथ गाँव में एक ऐसी संस्कृति विकसित होगी जिसमें बच्चे जो हैं वो खेल, पढ़ाई और मोबाइल तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि खेल, कला कला, संस्कृति और सामुदायिक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि खेल और सामाजिक एकता की भावनाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि खेल समाज को जोड़ने का एक प्रतिभाशाली माध्यम है। किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में श्रोता साथियों, जब अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो हम देखते हैं कि आपसी सहयोग की भावना है वो भी विकसित होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ भाषा, क्षेत्र और अन्य जो मतभेद होते हैं उनसे भी वो आगे बढ़कर सोचते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, किसी भारतीय खिलाड़ी की सफलता पर देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों का साथ और खुशी भी शामिल होती है। इस प्रकार खेल राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि हम कार्यक्रम में जान पा रहे हैं कि किस तरीके से खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और किस तरीके से बचपन से ही हमें बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करने की जरूरत है, तो ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए परिवार की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका है, और किस तरीके से खेल के माध्यम से हम बच्चों को जीत से ज्यादा जरूरी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोता साथियों, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ी या परिवार की जिम्मेदारी नहीं, पूरा समुदाय इसमें भूमिका निभा सकता है। गाँव में उपलब्ध खुले जो स्थान है वहां पे सुरक्षित और उनको साफ रखा जाए। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। स्कूल और पंचायत मिलकर बच्चों के लिए खेल आयोजित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवा स्वयं सेवक छोटे बच्चों को खेल सिखा सकते हैं। इससे गांव में एक ऐसे संस्कृति विकसित होगी मनीषा, जिसमें बच्चे केवल पढ़ाई और मोबाइल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि खेल, कला, संस्कृति और सामुदायिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे।
1: जी हां,
0: साथियों कहना चाहेंगे कि खेल केवल पदक जीतने के लिए नहीं, खेल स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी महत्वपूर्ण है। खेल हमें अनुशासन देते हैं, खेल हमें धैर्य सिखाते हैं, खेल हमें हार से सीखना सिखाते हैं, खेल हमें टीम भावना सिखाते हैं, और खेल हमें अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करना सिखाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि खेलों में समय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खिलाड़ी को अभ्यास के लिए श्रोता साथियों नियमित समय देना पड़ता है। यदि वह लगातार अभ्यास में लापरवाही करता है तो हम देखते हैं कि इससे उसकी क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। एक सफल खिलाड़ी अपने दिन की योजना बनाता है, अभ्यास करता है, आराम करता है, भोजन करता है, और जो उसके कार्य होते हैं उसमें निर्धारित समय वो रखता है। समय का यह श्रोता साथियों अनुशासन हमारे जीवन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करता है। साथ ही साथियों हम देखते हैं कि खिलाड़ी की सफलता के पीछे केवल उसकी मेहनत नहीं होती, उसके परिवार का सहयोग, प्रशिक्षण का मार्गदर्शन और समाज का प्रोत्साहन भी इसमें शामिल होता है। हम देखते हैं कि कई खिलाड़ी कठिन आर्थिक परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को समाज और संस्थाओं की सहायता मिलना भी आवश्यक होता है। हम देखते हैं कि जब खिलाड़ी को यह विश्वास होता है कि उसके पीछे उसका परिवार है, देश खड़ा है, तो उसका आत्मविश्वास है वो अंजलि जी हम देखते हैं कि वो बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि राष्ट्रीय खेल दिवस हमें मेजर ध्यानचंद की महान खेल प्रतिभा को याद करने के साथ साथ अपने जीवन में खेलों का महत्व समझने का अवसर देता है।
1: जी हाँ,
0: खेल किसी एक दिन की गतिविधि नहीं है, इन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ व्यक्ति से होती है, और स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण में शारीरिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए बच्चों के खेल का अवसर देना, युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना और बुजुर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम केवल खिलाड़ियों को बधाई देने तक सीमित न रखें, हम स्वयं भी खेल से जुड़ें और अपने परिवार, गाँव के बच्चों को भी खेल के मैदान तक पहुँचाएं। मैदान में पसीना बहाने वाला शरीर मजबूत होता है, चुनौतियों से लड़ने वाला मन मजबूत होता है, और मिलजुल कर खेलने वाला समाज मजबूत होता है।
1: जी हाँ,
0: ये श्रोता साथियों हम संकल्प ले सकते हैं कि हर घर से खेल, हर गांव से खिलाड़ी, हर बच्चे को अवसर और हर युवा को आगे बढ़ने का मैदान। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खेलेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे हम तो मजबूत बनेगा हमारा समाज।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य केवल एक महान खिलाड़ी को याद करना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इसका व्यापक उद्देश्य है श्रोता साथियों पूरे समाज में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण को बनाना। हमें इस दिन यह विचार करना चाहिए कि हमारे बच्चे कितना समय शारीरिक गतिविधियों में बिताते हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास पर्याप्त खेल के मैदान और सुविधाएं हैं या नहीं। यदि हम केवल एक दिन के खेल दिवस को मनाएं, बाकी पूरे साल श्रोता साथियों ऐसे ही बिता दी, तो यह हमारा खेल दिवस का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही साथियों हम कहना चाहेंगे कि भारत की सबसे बड़ी आबादी हमारे युवा साथी हैं। यदि युवा स्वस्थ, अनुशासित, मेहनती होंगे तो हम देखते हैं कि देश का भविष्य भी मजबूत होगा। युवाओं को अपने खाली समय में केवल मोबाइल फोन या इंटरनेट पर बिताने के बजाय खेलों और अन्य जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उनमें लगाना चाहिए। हर युवा का खिलाड़ी बनना जरूरी नहीं है श्रोता साथियों, लेकिन हर युवा का सक्रिय और स्वस्थ रहना जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार। साथी श्रोता साथियों आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागो रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं और आप भी आपकी फरमाइश की गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है फूल और कांटे, गीत के बोल ही धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़की जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है।

राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चना ताई गोड़ा ने, हीरामन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभाजी गोड़ा ने। किसी भी जुड़ना चाह रहे हैं, उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेराब जहां जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है फूल और कांटे, गीत के बोल हैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों के फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागा रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में शुरुआती गीत तो हमने सुनी लिया, अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल ही पास वो आने लगे जरा जरा। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सबरानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। और विश्वता साथी जुड़ रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। और विश्वता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम एमपी से जगतीश धाकड़, शिविर रंजू भाई, युवराज सिंह जागड़ और शिवांगी जी। इस गीत के अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिकरा डावर। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं शेख शहीद और असम भाई जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, सीएम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। यतला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपर्णव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल ही पास वो आने लगे जरा जरा। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है श्याम की टी वंदना कीर्ति, कार्तिक की टी, भाविका जी की टी और की टी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे जाकोट राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इस गीत के अनुरोध करता है जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगुताई राज यादव, कुमार सचिन जी, सर्वधर्षिता जानवी और प्रणाली देशमुख जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं जोन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पॉल डिकिस्ट्रो, विलिस जी डिकिस्ट्रो। इस गीत के अनुरोध करता है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा जी गोस्वामी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है विश्वात्मा। गीत के बोल हैं, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गीत की फरमाइश करता है छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजयुक्ता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी और भी श्रद्धा साथी जुड़ना चाह रहे हैं। पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष जी विश्वकर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायरा जी सुरुषी। इस गीत के अनुरोध करता है वासिम सी, विशाल, सोनाली, समर्पण और भक्ति जी। नांदूरा से जुड़ना चाह रहे हैं संतोष, उषा, अभिषेक, अनिकेत और सागर जी। इस गीत के अनुरोध करता है बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांची अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। यवतमाल से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल मनकर, सरला, विशाल, चेतना और रोशनी और बेबी प्रियांशी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है विश्वात्मा। गीत के बोल ही सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुड़वारा से। फिल्म का नाम है फूल और कांटे, गीत के बोल हैं मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिसाद खान, अनु खान और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशी मुणत। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक बैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, वनिता जाधव, आरती जाधव, प्रसाद जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही मैंने प्यार तुम्हें से किया है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुरादाबाद से। फिल्म का नाम है जनता की अदालत। गीत के बोल हैं, हम भी पागल तुम भी पागल। इस गीत की फरमाइश करता है माया देवी ऋतिक अदिति जी का साना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, बुलेनखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चीपा। इस गीत के अनुरोध करता है डाबकी रोड अकुला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं आकोट से विनायक भिंडी, श्रीमती मंगलाजी भिंडी, विजय शुभम, पवन जरिए और सजीव जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है जनता की अदालत। गीत के बोल हैं, हम भी पागल तुम भी पागल। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, हम भी पागल तुम भी पागल। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाकोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। गीत के बोल हैं जीवन की बगिया महकेगी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या जी गोस्वामी और अन्नू जी गोस्वामी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पर्ल डिकिस्ट्रो, विरिसी डिकिस्ट्रो। इस गीत की अनुरोध करता है सिंडी से सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी और मानसी जी मालोदी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही जीवन की बगिया महकेगी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है हरियाणा से। फिल्म का नाम है मिस्टर खिलाड़ी। गीत के बोल हैं, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। इस गीत की फरमाइश करते हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, बरेली से मोहम्मद यासिन अंसारी, शमशुल अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी, महिनूर जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत जी और सादिया जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश

हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का श्रोता साथी हूँ, एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से आपकी पसंद के गीत संगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। तो अगर आप भी आपके पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643। एक बार पुनः आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है दिलवाले, गीत के बोल है सातों जन्म में तेरे। इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। फरमाइश करता है इस गीत की पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय कुमार शाहू, सुजाता शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पाज मरावी, ऋषभ मरावी। भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। तो आइए साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है सातों जन्म में तेरे।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। गीत के बोल है, ये तो सच है कि भगवान है। इस गीत को आवाज़ दी है गायक कुमार शानू SP बाल सुब्रमण्यम अलका याग्निक ने, और फरमाइश करता है इस गीत की अकोट महाराष्ट्र से है नितिन पाटिल और नलिनी पाटिल। अनुरोध करता है मेरठ से है अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवम जैन। अनुरोध करता है बिहार से है मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से है सोनम सिंह, अनामिका सिंह। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है चन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजू शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास और माधवानी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल है, ये तो सच है कि भगवान है।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं जीता था जिसके लिए। फरमाइश करता है इस गीत की नेहरू चौक पेठर से है सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों नाम बता दें आप सभी को। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुट्टी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद शहीद अब्बासी, निकसपरीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी, पूरा अब्बासी परिवार। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

करता है इस गीत की। मुरादाबाद से हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद बारिस अंसारी, बेटी अली शिफा अंसारी, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, ये मुरादाबाद से हैं। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं। उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों नाम बता दें आप सभी को। पथरिया से हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मैं अगर सामने आ भी जाया।

0: सिर्फ सॉफ्ट।
1: साथियों अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गीत के बोल हैं साजन जी खराए, फरमाइश करता है इस गीत की। कुरावली से है ऋषि हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नूरीन अंसारी, आसिया अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। अनुरोध करता है साथियों जो इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललित खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी, मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजफल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। तो आइए साथियों सुनते हैं आपके फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं साजन शिखर राय।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं आ अब लौट चलें। फरमाइश करता है इस गीत की छत्तीसगढ़ से है सीमा, कविता, उर्वी और रितु। इसी गीत के साथ और भी सदस्य जुड़ रहे हैं। मधुबनी बिहार से हैं एमडी साबिर परवाना, एमडी शाजिद अली, एमडी जाहिद अली, एमडी शाहिद अली। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, नाम बता दें आप सभी को। उमरखेड़ा महाराष्ट्र से हैं अभिजीत राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश। बम्बई से हैं प्रणीत, सिद्धार्थ, अर्जुन। अनुरोध करता है इस गीत के साथ जुड़ने वाले। सुभाष से हैं चक्रधारी, श्रीमती कविता, मुस्कान, अनुष्का, भिवानी से हैं ये। और छत्तीसगढ़ से हैं कविता, पुष्पा अग्रवाल। ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। तो आइए साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत की भूल है दीदी तेरा देवर दीवाना। फरमाइश करता है श्रोता साथियों इस गीत की, कोरबा से है मुस्कान प्रिया अदिति और कविश, महाराष्ट्र से है पीएस नवाकर निर्मला, विशाल महाराष्ट्र से है नारायण इंगले सोपान और आशीष, इसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं साथियों, नाम बता दें आप सभी को। गुजरात गांधीग्राम से है प्रवीण सोनी पूजा पायल जगदीश जोहरी, अनुरोध करता है करवदा छत्तीसगढ़ से है गनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज और सूरज राजपूत, अनुरोध करता है साथियों इसी गीत के साथ जुड़ने वाले। किशनगंज बिहार से है रवि मोहनदास आशा देवी राघव कुमार भानुप्रिया, खंडवा से है योगेश गुजराती संजय मार्कंडे, बालो छत्तीसगढ़ से हैं देव शंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया तुषार देव तामुरिया डोली बेबी पूजा तामुरिया राधिका प्रभा देवी तामुरिया, महाराष्ट्र से हैं अनमोल शारदा आरती और प्रसाद, इसी के साथ साथियों जुड़ना चाह रहे हैं। किशनगंज बिहार से हैं रवि मोहनदास आशा देवी राघव कुमार भानुप्रिया, सुभाष सिंह चक्रधारी श्रीमती कविता चक्रधारी मुस्कान अनुष्का भवानी चक्रधारी, ये छत्तीसगढ़ से हैं, महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामेकर दिलीप रामेकर अक्षय रामेकर रुद्रा रामेकर रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्य, नीमच मध्य प्रदेश से हैं गोविंद पाटीदार ममता पाटीदार यशस्वी और हंसिनी पाटीदार। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

0: की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: समय नहीं होती बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ।
0: और जैसा कि गीत से पहले विषय से भी अवगत करवाया था और हमारी बातचीत भी रही थी खेल और युवा स्वास्थ्य, अनुशासन और नेतृत्व के संगम को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो यही हमारे श्रोता साथियों को बताते हैं कि आज के समय में जब युवाओं का काफी समय मोबाइल, इंटरनेट और स्क्रीन पर बीत रहा है कशिश, ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: जी जी।
0: नियमित खेल और शारीरिक गतिविधियां युवाओं को सक्रिय रखने के साथ साथ उनके मानसिक और सामाजिक विकास में भी मदद करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं साथियों कि युवावस्था जीवन का वह समय है।

0: जब शरीर और मन दोनों तेजी से विकसित होते हैं। इस उम्र में जागृति जी, स्वस्थ आदतों को अपनाना आगे के जीवन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने जैसा है।
1: बिल्कुल।
0: और हम जानते हैं कि खेल युवाओं को सक्रिय रहने का स्वाभाविक और आनंददायक माध्यम देते हैं। दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और कोई अन्य खेल हो, श्रोता साथियों, हर गतिविधि शरीर को सक्रिय रखने में योगदान देती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन खेल का लाभ केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है जागृति जी। हम देखते हैं कि खेलों के माध्यम से युवा तनाव को बेहतर तरीके से संभालना, हार के बाद दोबारा प्रयास करना और चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये सीखते हैं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि खेल और अनुशासन का रिश्ता भी बहुत गहरा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि खेल और युवा स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है।
0: बिल्कुल।
1: यही अगर खेल और अनुशासन के बारे में बात करें तो एक खिलाड़ी जानता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए लगातार हमें अभ्यास करना पड़ता है। समय की पाबंदी और नियमों का पालन जरूरी है। अगर किसी युवा को रोज अभ्यास करना है तो उसे अपने समय की योजना बनानी होगी, पढ़ाई करनी होगी, आराम करना होगा, खेल और अन्य जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा।
0: बिल्कुल।
1: यही अनुशासन धीरे धीरे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। और जो युवा मैदान पर नियमों का सम्मान करना सीखता है वो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझ सकता है।
0: बिल्कुल। साथी दोस्तों, हम खेल के माध्यम से टीम की भावना भी सीखते हैं।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि खेल हमें ये समझाते हैं जागृति जी कि हर काम अकेले नहीं किया जा सकता। टीम खेलों में हर खिलाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई आगे बढ़कर नेतृत्व करता है तो कोई अपनी टीम का समर्थन करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कोई कठिन समय में साथी का उत्साह बढ़ाता है साथियों। यहीं से युवाओं में सहयोग, सम्मान, संवाद और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि जीवन में ये गुण भी बहुत जरूरी है। परिवार हो साथियों, विद्यालय हो, कार्यस्थल हो या समाज क्षेत्र हो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि खेल नेतृत्व सीखने का एक बेहतरीन माध्यम है। मैदान में कप्तान को केवल अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देना होता, बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है।
0: बिल्कुल।
1: एक अच्छा खिलाड़ी ये सीखता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को समझना, सही निर्णय लेना, जिम्मेदारी स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, हार के समय टीम को संभालना और जीत के समय विनम्र बने रहना भी नेतृत्व की पहचान है। और यही गुण कशिश भविष्य में युवाओं को अच्छे विद्यार्थी, जिम्मेदार नागरिक, सफल पेशेवर और प्रभावी सामाजिक नेतृत्वकर्ता बनने में मदद करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम अनुशासन, नेतृत्व और खेल युवा स्वास्थ्य के संगम को जान रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: युवा साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही थी साथियों, और गीत से पहले हम जैसा कि खेल और युवा स्वास्थ्य के बारे में जान पाए थे, हमने अनुशासन और टीम भावना के बारे में भी जाना था जागृति जी, और खेल का नेतृत्व क्षमता से क्या संबंध है ये भी हम जान पाए थे।
1: जी हाँ।
0: अब यही अगर बात करें कि खेलों में हार भी बहुत कुछ सिखाती है, तो दोस्तों खेल का सबसे सुंदर पक्ष ये भी है कि इसमें हर बार जीत नहीं मिलती, कभी जीत होती है कभी हार होती है, लेकिन दोनों परिस्थितियां युवा को कुछ न कुछ जरूर सिखाती है जागृति जी।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि जीत हमें आत्मविश्वास देती है, जबकि हार हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का अवसर देती है। एक खिलाड़ी साथियों जब हार के बाद मैदान में दोबारा उतरता है तो वह अपने भीतर धैर्य और दृढ़ता विकसित करता है। यही सोच जीवन की दूसरी चुनौतियों में भी काम आती है जागृति जी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए युवाओं को हार से डरने के बजाय उससे सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। हम देखते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट पढ़ाई, जानकारी और संवाद के लिए उपयोगी है।
0: जी जी।
1: लेकिन लगातार स्क्रीन पर रहने की आदत हमारे सक्रिय जीवन को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में खेल युवाओं को स्क्रीन से बाहर निकलकर मैदान, प्रकृति और समाज से जुड़ने का अवसर देती है।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, जरूरत इस बात की है कि युवा अपनी दिनचर्या में पढ़ाई और तकनीक के साथ साथ शारीरिक गतिविधि, खेल और पर्याप्त आराम के लिए भी समय निकाले।
0: जी हाँ।
1: इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे श्रोताओं कि खेल केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का काम करता है। कशिश, मैदान में अलग अलग परिवार, समुदाय और पृष्ठभूमि के युवा एक साथ खेलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कशिश कि खेल हमें ये भी सिखाते हैं कि हमारी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन टीम की सफलता के लिए सभी का साथ जरूरी है। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता, युवा क्लब और सामुदायिक खेल गतिविधियां युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से युवा साथियों को हम कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, खेल को केवल प्रतियोगिता या पदक पाने तक सीमित आप मत समझिए। खेल आपके व्यक्तित्व को निखारने का एक माध्यम भी है। अपने रुचि के अनुसार कोई खेल आप चुनिए, नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, नियमों का सम्मान कीजिए और अपने साथियों का उत्साह बढ़ाइए।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, हार और जीत दोनों को सकारात्मक सोच के साथ आप स्वीकार कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकताओं में जगह दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि स्वस्थ शरीर, संतुलित मन और अनुशासित जीवन ही दोस्तों मजबूत भविष्य की नींव बनाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि खेल मैदान में खेले जरूर जाते हैं, लेकिन उनके सिख जीवन के हर मैदान में काम आती है।
0: बिल्कुल।
1: खेल युवाओं को स्वास्थ्य देता है, अनुशासन सिखाता है, टीम भावना विकसित करता है और नेतृत्व के गुणों को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए श्रोताओं, मैदान में पसीना बहाने वाला युवा जीवन की चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा होना सीखता है। इसीलिए खेलिए, सीखिए, आगे बढ़िए और अपने साथ साथ अपने समाज को भी स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक बनाने में योगदान दीजिए।
0: जी हाँ।
1: खेल ही स्वास्थ्य का आधार है, अनुशासन ही जीवन का संस्कार है और नेतृत्व से हम कह सकते हैं कि हमारे युवा अपने भविष्य को शानदार बना सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि खेल केवल जीतने और हारने का माध्यम नहीं है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक रास्ता है। खेल जो है जागृति जी, वो युवाओं को स्वस्थ शरीर के साथ साथ अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व की सीख भी देता है। आज के युवा यदि अपने दिनचर्या में खेल को थोड़ा सा स्थान भी देंगे और समय का सही प्रबंधन करेंगे, खेल भावना को जीवन में अपनाएंगे, तो वे न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि एक जिम्मेदार और सक्षम नागरिक भी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए साथियों कि स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज की पहचान होते हैं और अनुशासित युवा

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागतरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय।

0: के साथ में।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, जरा अपने बचपन को याद कीजिए कि गांव की गलियों में दौड़ना, दोस्तों के साथ कबड्डी खेलना, पेड़ के नीचे खेल बनाना, मैदान में क्रिकेट या फुटबॉल खेलना, और खेलते खेलते कब शाम हो जाना पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कशिश, आज जरा अपने आसपास हम देखें तो बच्चों के हाथों में मैदान की मिट्टी से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देने लगी है। क्या बच्चे पहले की तरह दौड़ते कूदते और खेलते हैं? क्या पढ़ाई, मोबाइल, टीवी और व्यस्त दिनचर्या के बीच उनका खेल का समय लगातार कम होता जा रहा है?
1: बिल्कुल।
0: और एक सवाल सबसे जरूरी कि क्या खेल केवल समय बिताने का साधन है या यह बच्चे के शरीर, दिमाग, व्यवहार और भविष्य को मजबूत बनाने वाली एक जरूरी जरूरत है?
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आज जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरीके से खेल का मैदान बच्चों के लिए केवल दौड़ने और खेलने की जगह नहीं होती है, वहीं वह हारना सीखता है, जीत की खुशियां समझता है, नियमों का पालन करता है, दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, निर्णय लेना सीखता है, गिरकर फिर उठना सीखता है। आज हमारा कार्यक्रम का विषय है कि बच्चे के जीवन में खेल, शारीरिक गतिविधियों का क्या महत्व है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातें हमारी ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि हम पहले दोस्तों को एक प्यारे से गीत के साथ में शुरुआत में ही मनोरंजन करवाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ हम करें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों में खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि खेल बच्चे के शारीरिक विकास के लिए क्यों जरूरी है, तो बचपन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस दौरान श्रोता साथियों, बच्चों को पर्याप्त शारीरिक गतिविधि की जरूरत होती है, जैसे कि दौड़ना, कूदना, तैरना, साइकिल चलाना, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल बच्चों को सक्रिय रखते हैं। अंजलि जी,
1: जी हाँ,
0: नियमित शारीरिक गतिविधियों से बच्चों में शरीर की ताकत और फुर्ती विकसित होती है, संतुलन और तालमेल बेहतर होता है शरीर का, साथ ही मांसपेशी और हड्डियों के विकास में भी मदद मिल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बात करें दोस्तों तो शारीरिक सक्रियता की अच्छी आदत भी बच्चों में बनती है, इसलिए खेल को पढ़ाई के बाद बचा हुआ समय नहीं बल्कि बच्चे की स्वस्थ दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हमें समझना चाहिए।
1: जी हाँ, इसी के साथ कशिश बात आती है कि खेल दिमाग को सक्रिय बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर खेल को केवल शरीर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन खेल का संबंध बच्चे के मानसिक विकास से भी है।
0: बिल्कुल,
1: खेलते समय बच्चा लगातार सोचता है कि उसे कहाँ जाना है, किस दिशा में दौड़ना है, किस समय गेंद पास करनी है और कैसे अपनी टीम को जीत दिलानी है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, इन छोटी छोटी परिस्थितियों में बच्चा निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना सीखता है, इसलिए खेल बच्चों में एकाग्रता, निर्णय क्षमता, रणनीति बनाने और परिस्थितियों के अनुसार प्रक्रिया देने जैसी क्षमताओं को विकसित करने में मदद कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि खेल बच्चों को खुश और सक्रिय रखता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के जीवन में पढ़ाई, परीक्षा और कई तरह की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन खेल उन्हें मानसिक रूप से हल्का होने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चा दोस्तों के साथ मैदान में खेलता है, दौड़ता है और हंसता है तो उसका मन प्रसन्न होता है।
0: जी जी,
1: खेल बच्चों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर देता है, इसलिए अगर बच्चा दिन भर चिड़चिड़ा या तनाव में दिखाई दे रहा है तो केवल उसे डांटने के बजाय ये भी देखें कि उसके दिन में खेल और खुली गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय है या नहीं।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथी श्रोता साथियों, खेल का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इसमें सामाजिक विकास बच्चों का होता है। जैसे कि टीम खेलों में बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं। अंजलि जी, किसी साथी को पास देना, अपनी बारी का इंतजार करना, नियम मानना, दूसरे की मदद करना और टीम की सफलता के लिए मिलकर प्रयास करना, ये सभी बातें साथियों बच्चे के व्यवहार का हिस्सा बनती है।
1: बिल्कुल,
0: और हम देखते हैं कि यही गुण आगे चलकर परिवार, विद्यालय और समाज में भी काम आते हैं। श्रोता साथियों, एक बच्चा मैदान में सीखता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम मिलकर भी जीत सकते हैं।
1: जी जी,
0: खेल का मैदान बच्चे को जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है कि हर बार जीतना संभव नहीं है, कभी बच्चा जीतेगा तो कभी हारेगा। जीत उसे खुशी देगी लेकिन हार उसे धैर्य और दोबारा प्रयास करना सिखा सकती है। अंजलि जी,
1: जी हाँ, इसी के साथ कशिश श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि खेल के अवसरों में भी समानता जरूरी है। कई बार लड़कों को मैदान में खेलने की आजादी आसानी से मिल जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा रोक टोक होती है। हमें ये सोच बदलने की जरूरत है कि बेटी को भी कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, दौड़, साइकिलिंग या उसकी पसंद के अन्य खेलों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह बेटी की रुचि नृत्य, योग, तैराकी या किसी अन्य गतिविधि में हो तो उसे भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि कशिश, खेल की कोई सीमा लिंग से तय नहीं होनी चाहिए। खेल हमेशा बच्चों के लिए ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: और हर खेल में हर बच्चे का भाग लेना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि पहले के समय से अभी के समय में सोच बहुत ज्यादा बदल गई है। आज लड़कियां जो है कबड्डी, खो खो, अलग अलग तरीके के खेल खेलती हैं और प्रतियोगिताएं जीतती भी हैं, जिससे माता पिता को गर्व महसूस होता है और हर माता पिता अपने बच्चों को खेल से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ कुछ माता पिता सोचते हैं कि खेल में ज्यादा समय देने से पढ़ाई प्रभावित होती है, लेकिन श्रोता साथियों, बच्चों के लिए सही रास्ता खेल और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना नहीं बल्कि दोनों में संतुलन बनाना है। इसलिए कशिश, हमें दिनचर्या इस तरीके से बनानी होगी बच्चों की कि उन्हें पढ़ाई के लिए भी समय मिले, खेल के लिए भी समय मिले, आराम और नींद के लिए भी समय मिले।
0: जी
1: क्योंकि
0: हाँ,
1: जब बच्चा व्यवस्थित दिनचर्या अपनाता है तो वह समय का महत्व भी सीख पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी कर रहे हैं और जान रहे हैं हमारे बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां और जो खेल होते हैं उनका क्या महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी हमारी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे कि किस तरीके से पढ़ाई और खेल में हमें संतुलन बनाने की जरूरत है, ताकि बच्चा जो है वो सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय निकाल पाए। आज हम देखते हैं कि बच्चों के मनोरंजन का बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर आ गया है। मोबाइल गेम, वीडियो, सोशल मीडिया बच्चों को लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने की आदत डाल सकते हैं। इसलिए घर में यह जरूरी है कि मोबाइल और स्क्रीन के साथ साथ वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को भी महत्व दिया जाए। बच्चों को बाहर खेलने दें, परिवार के साथ पैदल चलें, साइकिल चलाने का अवसर दें, खुले स्थान पर शारीरिक गतिविधियां करें। मोबाइल को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे बच्चे के पूरे खाली समय का मालिक भी नहीं बनने देना चाहिए। इस तरीके से मोबाइल और स्क्रीन के दौर में खेल किस तरीके से जरूरी है, इसका महत्व हम बच्चों को सिखा सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही इसमें माता पिता की भूमिका भी अहम है, यानी कि माता पिता खुद उदाहरण बन सकते हैं। साथियों, अगर माता पिता पूरे दिन बैठे रहते हैं तो बच्चे से कहते हैं कि जाओ खेलो, तो शायद हो सकता है कि बच्चा उतना प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर माता पिता स्वयं सुबह या शाम कुछ समय टहलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं या शारीरिक गतिविधि में भाग लेते हैं, तो बच्चा यह देखकर सीखेगा अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में परिवार सप्ताह में कुछ समय साथ टहल सकता है, मैदान जा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और पारंपरिक खेल खेल सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: इससे श्रोता साथियों शारीरिक गतिविधि के साथ साथ परिवार का आपसी जुड़ाव भी बढ़ेगा अंजलि जी। साथ ही अगर बात करें गाँव के पारंपरिक खेलों की, तो हमारे गाँव में अनेक ऐसे खेल खेले जाते हैं दोस्तों, जिनमें महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, जैसे

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ी रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के

0: आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर. हमारा फोन नंबर है 9460051234.
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org.
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में. तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त.

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरावारा हमरे भाई बहनों ने आपने बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हम रेडियो हो आप सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते मैं आप सबनों घणे मन स्वागत कर रहा हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे जहाँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लिए एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बहनों आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि फल ने फूल बनवानी अवस्था में फसल ने देखरेख अपने हर ते करवी है ने कई कई विशेष बातों नु अपने ध्यान रखवानी जरूरत है। तो भाई बहनों आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक घना कनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन पहले अपने हमरा विदा गीत मन कर अपनी बातें। तो भाई बहनों आप हमारे रेजू आप रेडियो अपनी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: फिर तो आशु पूर्ण और गीत बात एक वक्त फिर आप सबनों घर में स्वागत करो हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो गीत के पहले आपने विषय बताड़ो तो कि आज आप बातचीत करवा वाला हूँ कि अपने फूल फल बनवाने जो स्थिति रहे है ते वक्त अपने अपनी फसलों की देखरेख हरते करी सको। तो आ विषय में बातचीत करवा बोले आज अपने कार्यक्रम तक जुड़े रहे मंगलाल जी। तो सबसे पहले अपने हमारी बातें अपनी बातें।
1: सर नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीवाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्होंने जो भी फसल कर रखी है उसमें फल और फूल बनने की अवस्था में उन्हें फसलों की देखभाल कैसे करने की जरूरत है।
2: तो देखिए जैसे हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
1: बिल्कुल।
2: और ये जो अवस्था है ये अवस्था भी हमारे फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे फूल आना या फल बनना तो ये क्या होता है कि जैसे ये जो समय होता है इसमें पौधों को क्या अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
2: जिसमें जैसे उसमें क्या फूल और जो फल बनते हैं ना और उसमें बीज बनने की अवस्था शुरू होती है उसके अंदर।
1: बिल्कुल।
2: यदि मान लो कि अवस्था में पौधे पर्याप्त नमी या पोषण या खाद या देखभाल आप नहीं करते हो तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
1: जी जी।
2: फूल झड़ सकते हैं अगर आप निगरानी नहीं रखोगे तो। उसी तरह जो छोटे फूल है वो भी खराब हो जाते हैं। तो हमारा क्या है इस अवस्था में हमारी जो निगरानी है हमारा खेत का अवलोकन है वो हमें समय समय पर करने की जरूरत है।
1: जी जी।
2: ताकि हम लोगों को पता लग सके कि कितनी नमी है कितने फूल बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि फूल झड़ रहे हो।
1: बिल्कुल।
2: तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें इस अवस्था में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जो मिट्टी की नमी है उसको देखकर सिंचाई का जो प्रबंधन है वो करें हम।
1: जी जी।
2: अगर नमी पहले से अधिक है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर नमी कम है तो आप वहाँ पानी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह क्या होता है कि जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको उसको खेत में जो उठाकर देखना चाहिए हाथ से कि उस मिट्टी की जो है वो कैसी है। जैसे होता क्या है कि मिट्टी एक तो भारी हो जाती है या फिर हल्की हल्की रहती है तो वहाँ देख ले कि अच्छा नमी उसमें कितनी है तो चेक करना जरूरी है। उसके अनुसार फिर आप जो है उसमें पानी देने की सोच सकते हैं।
1: जी जी।
2: इसी तरह जैसे मिट्टी है तो पानी अगर मान लो कहीं ऐसा खेत है आपका कि उसमें लंबे समय तक पानी जमा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक पानी अगर खेत में जमा रहता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है आपके फल और फूलों को दोनों को। इसी तरह जो है जैसे घास है हम मल्चिंग की बात करते हैं तो अगर आपके वहाँ आसपास अगर आपके पास उपलब्ध है मल्चिंग करने के लिए पत्तियां हैं घास है या हमारे जो गाय भैंस को हम चारा खिलाते हैं उसका जो अवशिष्ट बच जाता है वो हो तो उसको आप माँ कर सकते हो तो उससे जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह क्या होता है कि अभी बारिश का मौसम है तो बारिश हो सकता है कि ज्यादा हो जाए या कम भी हो सकती है तो बारिश अगर अधिक हो जाए तो हमारे खेत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अतिरिक्त पानी है वो निकल कर जाए वो जमा नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का हम लोगों को बहुत ध्यान रखने की जो आवश्यकता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जब ये अवस्था होती है तो इस अवस्था में क्या होता है कि मिट्टी को और पौधों को दोनों को पोषण की जरूरत होती है।
1: जी जी।
2: जिसमें अब पोषण की हम बात करते हैं तो हमारे जो समुदाय में हम परंपरागत तरीके से हम खेती करते हैं तो जैसे गोबर खाद है या बर्मी कंपोस्ट है या हमारा उखेड़ा है हम जीवामृत दसपर्णी की बात करते हैं तो ये जो चीजें हैं उनकी आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि जैसे अगर आप खाद समय से देंगे तो आपके जो फसल हो उसका ग्रोथ अच्छा होगा।
1: जी हाँ।
2: इसी तरह क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो जैसे जीवामृत की बात करते हैं या दसपर्णी है तो ये अवस्था होती है इसमें फूल झड़ने के चांस रहते हैं।
1: जी हाँ।
2: अगर आप उसको धीरे धीरे धीरे धीरे समय समय पर आप छिड़कते हैं तो आपके जो फूल है वो झड़ेंगे नहीं और अधिक मात्रा में जो आपके फल और जिसकी बात करते हैं वो अधिक लगेंगे।
1: बिल्कुल सर आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि फूल और फल बनने की अवस्था में किस तरीके से खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है संतुलित पोषण का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यही फूलों की रक्षा कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
2: जैसे हम बात करते हैं फूलों की रक्षा की तो देखो सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है कि उस अवस्था में आपको बहुत गहनता से ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। और सुरक्षा तो अगर बात करें तो वो आपकी सावधानी एक सुरक्षा है कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे अपने पहले बात की, जैसे फूल आ रहे हैं, अगर अचानक मान लो को गिरने लगे तो हम रासायनिक की जगह जो देसी दवाई है, जैसे हमने बात की थी, जीव अमृत है, दसपर्णी है, या ब्रह्मास्त्र है, कंडा पानी है, लहसुन जो प्याज का पेस्ट है, तो ये क्या होते है कि अगर उस अवस्था में आप तुरंत इलाज करते हो तो आपके फल जो है अच्छे से फूल आएंगे और फल भी ज्यादा लगेंगे। दूसरा है कि दो टाइम हमको फूल अच्छे से दिखते हैं, वो होता है शाम और सुबह। तो आप शाम और सुबह दोनों टाइम जो है अवलोकन करें, ध्यान रखें, क्योंकि जब सुबह होती है तो आपको फूल अधिक नजर आएंगे, पूरे स्पष्ट नजर आएंगे, वैसे ही शाम को भी आएंगे। तो हमें देखनी चाहिए कि ये कुछ जड़ तो नहीं रहे हैं या कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो उस तरह से फिर क्या है आप वहां पे ध्यान रख सकते हो। इसी तरह क्या होता है कि कुछ हमारे कीट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं फलों और फूलों दोनों के लिए।
1: बिल्कुल।
2: जैसे मधुमक्खियां हैं, अगर मधुमक्खियां आपकी बाड़ी में बैठती है तो वो आपके लिए अच्छा है, तो वो ध्यान रखिए कि आप कितने जो बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो मित्र होते हैं, जैसे मधुमक्खी है मित्र कीट है, उसी तरह एक होता है शत्रु जो फूलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
1: बिल्कुल।
2: तो उनका भी हम ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का है। दूसरा क्या है कि हमारे अगर फसल की बात करते हैं तो हमारे मेड़े हैं उस पे हमें जैसे फूल वाले पौधे होते हैं वो लगाने चाहिए, क्योंकि अगर फूल अधिक होगा तो आपकी मधुमक्खियां जैसे कीट है मित्र कीट वो बहुत अधिक बैठेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और वो आपकी फसल को है बहुत अच्छे से जो फायदा पहुंचाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हमको जब भी आप अगर कुछ दवाई छिड़कते हो या कुछ देते हो फसल में, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि हम छिड़क रहे हैं तो वो उसकी आवश्यकता है या नहीं है। बिना आवश्यकता के हमको कुछ भी नहीं देना है।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह अगर जैसे आप सुरक्षा की बात करते हैं तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे फूल झड़ने लगते हैं, जैसे मिट्टी की जो नमी है अगर वो कम होगी तो आपके फूल है वो झड़ने लगेंगे। इसी तरह अगर अधिक पानी भर गया आपके खेत में तो आपके फूल और फल है उसको नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी जी।
2: अधिक गर्मी या अधिक ठंड दोनों चीजें फूलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ में जैसे हमने पोषक तत्वों की बात की थी कि अगर मिट्टी में पोषण नहीं है तो उसके कारण भी कई बार क्या होता है फूल झड़ने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कीटों का प्रकोप है वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस दौरान आप जो हमारे जो हम बात करते हैं परंपरागत जो देसी दवाइयां हैं उसका उपयोग हमें करना चाहिए।
1: जी जी।
2: इसके साथ में जो है हमने बात की थी कि पौधों को अधिक फूल या जैसे फल की बात करते हैं, तो उसमें क्या कि अगर मान लो कोई ऐसा पौधा है जिसको ज्यादा भार हो रहा है तो आपको उसको सपोर्ट भी करना।
1: जी जी।
2: हो सकता है ज्यादा भार के कारण उसकी टहनियां टूटने लगी, तो वो हम ध्यान रखना है। कभी भी रासायनिक और जो गलत कीटनाशक है वो हमें नहीं देना है, क्योंकि हमारी खेती है, हमारे पौधे हैं, हमारे घर में काम आएंगे, हम उनको खाएंगे, तो कभी भी रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है कि जो पौधों की स्थिति है उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि पौधा की ग्रोथ कैसी है, कैसे बढ़ रहा है, फूल कितने लगे हैं, कितने फूल और लग सकते हैं, तो वो सारी चीजें बारीकी से हमें देखने की जरूरत है। दूसरा एक होता है मौसम का बदलाव।
1: बिल्कुल।
2: तो मौसम के बदलाव में क्या कि हमें देखने की जरूरत होती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत गर्मी है और फिर अचानक ठंड हो गई या बारिश आ गई, तो उसमें क्या होता है कि फूल झड़ने के जो चांस ज्यादा रहते हैं, तो हमें उसको देखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि फूल झड़ने के क्या कारण है और किस तरीके से कीट और रोग की निगरानी हमारे किसान भाई बहनों को करने की जरूरत है, यही अब बात आती है कि फल बनने के बाद हमारे किसान भाई बहनों को क्या करना है और क्या नहीं करना है।
2: देखिए, अगर हम बात करते हैं कि फल बनने की, तो फल जो बनते हैं तो हमें उस दौरान दो तीन चीजें हैं जो हमने पहले भी बात की है, वो तो हमें ध्यान रखना ही है, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे आप तो फिर आपकी जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है। तो जब फल बनते हैं तो सबसे तो पहले तो ये है कि आपको उस फलों को नियमित देखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि अगर फल बन गया तो हो सकता है कि किसी प्रकार का रोग तो ना लगा, और जितने फल उसके आए हैं वो उतने फल सुरक्षित है क्या नहीं, तो वो आपको एक तो पता लगना है। दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो चाहे सब्जियों के पौधे हो चाहे वो फलों के हो, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रोग लग जाता है एक पेड़ में, अगर रोग लग गया, कीट लगा हुआ है, तो आप उस टहनी को काट के अलग कर दो।
1: बिल्कुल।
2: तो उससे क्या होगा कि दूसरे टहनियों में वो नहीं
1: पहुंचेगा।
2: जी, इसी तरह जैसे अधिक फल होने की स्थिति में क्या होता है, जैसे उसका भार की हमने बात की, तो उसको सपोर्ट के लिए आप कुछ लगा सकते हैं, जैसे पौधे की आवश्यकता अनुसार। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर उसको, जैसे हमारा केला होता है, केले क्या होता है अधिक भार हो जाता है तो टूटने का चांस रहते हैं, तो उस दौरान आप लकड़ी या परंपरागत कोई भी ऐसा उपाय करें ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। इसके साथ में जो है, जैसे फल है, अगर कुछ ऐसा पौधा है कि उसके जो फल है वो अगर जमीन से संपर्क में है, मतलब टच हो रहे हैं, तो उनको नहीं होने देना चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए। पानी जो है वो समय समय पर दे, आप कभी भी कम या ज्यादा पानी ना दें उनको, समय पर जरूरत है तो दे, नहीं तो नहीं दे।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह जैसे कीट है और पशु है, तो कई बार क्या कि आपके फलों के पौधों को जो पशु भी तोड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, कीट है, तो उनका प्रबंधन है जो अच्छे से करना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने ये बताया कि फल बनने के बाद हमारे किसान भाई बहनों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
2: जी, तो क्या नहीं करें, एक तो बिना जो है जानकारी या बिना पहचान के कोई भी कीटनाशक का उपयोग ना करें। दूसरा है, फूल आने के समय जो दवाओं का छिड़काव कभी ना करें, अगर उस स्थिति में तो खेत में है, जल भराव नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। खाद या जैसे उर्वरक की बात करते हैं हम, तो ज्यादा नहीं डालें, आपके पौधे जल सकते हैं। जैसे पौधों की आवश्यकता है उसके अनुसार उनको आप पानी दें, पहले चेक करें मिट्टी की नमी, उसके बाद पानी दें। कुछ पौधों में रोग है तो उनको अलग कर दे, टहनियां काट कर, जैसे हमने पहले भी कहा था। और अगर फल है, फल में भी अगर किसी प्रकार का कुछ रोग लगा हो तो उस फल को तोड़ के अलग कर दे, बाहर जो है खेत से बाहर फेंक दे उसको।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह जो है, जो परंपरागत दवाएं हैं वो भी अधिक मात्रा में नहीं छिड़के आप, आवश्यकता लगे तो आप दें, दसपनी और जिसकी हम बात करते हैं। दूसरा कि जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि जैसे दवाएं छिड़कते हैं तो उसमें क्या है कि आप किससे छिड़क रहे हो, कैसे छिड़क रहे हो, तो वो सावधानी रखनी है आप लोग।
1: बिल्कुल
2: जी।
1: तो सर, जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है कि फल और फूल बनने की अवस्था में किस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को फसल की देखभाल करनी है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं सभी श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो फूल और फल बनने की जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, तो आप नियमित उसका अवलोकन करें, निगरानी रखें और आवश्यकता अनुसार जो है संसाधनों का उपयोग करें।
1: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी, धन्यवाद।
0: આપણે ઘણા અસલ તરીકા થકી ઘણા ઘણા વાત બતાડી હૈ, આશા કરો હો કે હમારી વાત આપને ગમી હોગા, કેમકે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે આજ કાર્યક્રમ થકી છૂટો પડવાનો, તો છૂટો તો પડો પણ સાથે પહેલા હમ રહ્યા એક ઓર ગીત મોરે પણ છૂટો।

0: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो
4: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसूरा ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जीत से आगे जीवन की सीख, यानी कि जीत हमें खुशी देती है लेकिन जीवन की असली सीख हमें उस सफर से मिलती है जो जीत तक पहुंचाता है। जीवन को यदि एक यात्रा माना जाए अंजलि, तो इसमें हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। कोई परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, तो कोई समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है। श्रोताओं, इन लक्ष्यों को पाने की कोशिश में हम अक्सर जीत को ही सफलता का अंतिम पड़ाव मान लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या सचमुच जीवन केवल जीतने का नाम है?
0: नहीं,
1: जीवन की वास्तविक सुंदरता जीत से आगे छिपी उन सीखों में है जो हमें संघर्ष, असफलता, धैर्य, मेहनत और अनुभव से मिलती है।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं जीत के आगे जीवन की सीख को लेकर।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जीत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जीत हमें आत्मविश्वास देती है और हमारे प्रयासों को पहचान दिलाती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोता साथियों, यदि जीत के साथ विनम्रता, संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान न हो तो वह जीत अधूरी रह जाती है। दूसरी ओर कई बार हारने वाला व्यक्ति भी जीवन में बहुत कुछ जीत जाता है, जैसे कि अनुभव, समझ, धैर्य और खुद को बेहतर बनाने की शक्ति।
0: जी हाँ।
1: इसलिए जीवन में केवल यह देखना जरूरी नहीं कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि उस उपलब्धि तक पहुंचते हुए हमने क्या सीखा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जागृति जी, हम देखते हैं कि हम सामान्यतः जीत का अर्थ किसी प्रतियोगिता में प्रथम आना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या किसी लक्ष्य को हासिल करना समझते हैं, लेकिन जीत का अर्थ है इससे कहीं व्यापक। जब कोई विद्यार्थी असफल होने के बाद फिर से प्रयास करता है तो वह भी जीत रहा होता है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता तो वह भी विजेता है।
0: जी हाँ।
1: जब जागृति जी, कोई युवा अपनी गलतियों को स्वीकार करके स्वयं को सुधारता है तो यह भी एक बड़ी जीत ही है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्ची जीत तो वो है जिसके बाद इंसान का व्यक्तित्व और बेहतर बन जाए। अगर सफलता हमें अहंकारी बना दे तो वो सफलता हमारे लिए खतरा बन सकती है, लेकिन अगर सफलता हमें विनम्र और जिम्मेदार बनाए तो वही सफलता जीवन को सार्थक बनाती है। जीत का सबसे सुंदर रूप वो है जिसमें व्यक्ति खुद से बेहतर बनकर लूटे। किसी भी सफलता के पीछे एक लंबा सफर होता है, उस सफर में मेहनत होती है, त्याग होता है, इंतजार होता है और कई बार निराशा भी होती है। जब मंजिल मिल जाती है तो लोग अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन उस परिणाम के पीछे छिपी मेहनत और संघर्ष ही व्यक्ति को वास्तविक रूप से मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मान लीजिए दोस्तों कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, अंजलि उसकी उपलब्धि निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि उसने समय का सदुपयोग करना, नियमित अध्ययन करना, कठिन विषयों से न डरना और अनुशासन में रहना सीखा। ये सीख उसके जीवन में परीक्षा के परिणाम से कहीं अधिक लंबे समय तक उसके साथ रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें अपने जीवन के सफर का सम्मान करना चाहिए। मंजिल महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें वो इंसान बनाता है जो हम आगे चलकर बनते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति जीतना चाहता है, लेकिन हर बार जीत संभव नहीं होती है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: कभी परीक्षा में अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आता तो कभी प्रतियोगिता में हार मिलती है, कभी नौकरी या अवसर हाथ से निकल जाता है तो कभी हमारी योजना सफल नहीं होती। ऐसे समय में जागृति जी, निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन हार को जीवन का अंत मान लेना गलत है, क्योंकि हार हमें अपनी कमियों को पहचानने का अवसर देती है। जीत हमें बताती है कि क्या सही किया, लेकिन हार अक्सर ये बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि हार के बाद यदि हम स्वयं से पूछें कि मैं कहाँ चूका, मैं क्या बेहतर कर सकता था, अगली बार मुझे क्या बदलना चाहिए, तो हार हमारे लिए शिक्षक बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जागृति जी, असफलता से हम सभी को भागना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता को समझना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और फिर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं कि जीत से आगे की सबसे बड़ी सीख क्या होती है। तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हार भी हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। इसी के साथ अब बात आती है धैर्य की। श्रोता साथियों, आज के समय में हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है। हम चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है जागृति जी कि हर अच्छी चीज को समय लगता है। बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं बनता, उसी तरह मेहनत करने के बाद सफलता भी हमेशा तुरंत नहीं मिलती। धैर्य हमें कठिन समय में टिके रहना सिखाता है। जब परिणाम देर से मिलता है तब धैर्य ही हमें निराश होने से बचाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है श्रोता साथियों, यकीन मानिए कि वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है। युवाओं के लिए सीख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जागृति जी, कि सोशल मीडिया और तेज जीवन शैली के दौर में हमारे अंदर सफलता को बहुत जल्दी पाने की इच्छा बढ़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि धीमी गति से चलना असफलता नहीं है, रुक जाना असली हार है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जीत के पीछे सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मेहनत है। प्रतिभा व्यक्ति को शुरुआत में आगे बढ़ा सकती है, लेकिन निरंतर मेहनत ही उसे लंबे समय तक सफलता दिलाती है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि एक साधारण युवा लगातार अभ्यास करके उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। एक सामान्य खिलाड़ी नियमित प्रशिक्षण से बेहतर खिलाड़ी बन सकता है। एक छोटा सा प्रयास भी अगर रोज किया जाए दोस्तों, तो समय के साथ बड़ा परिणाम हमें दे सकता है। मेहनत हमें केवल सफलता नहीं देती, बल्कि अनुशासन आत्मनिर्भरता भी सिखाती है। इसीलिए आपको कहना चाहेंगे कि जब भी सफलता मिले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस सफलता के पीछे कितने छोटे छोटे प्रयास जुड़े हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण है जीत के बाद विनम्र बने रहना, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि सफलता मिलने के बाद यदि व्यक्ति दूसरों को छोटा समझने लगे तो उसकी उपलब्धि का मूल्य कम हो जाता है। वास्तविक विजेता वह है श्रोता साथियों, जो जीतने के बाद अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: जी हाँ।
0: वो अपने माता पिता, शिक्षकों, साथियों और उन सभी लोगों को याद रखे जिन्होंने उसके सफर में उसका साथ दिया। विनम्रता व्यक्ति को बड़ा बनाती है। ऊंचाई पर पहुंचकर भी जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही वास्तव में जीवन में सफल कहलाता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जीवन हमें यह भी सिखाता है जागृति जी कि हर बार जीत हमारी ही नहीं होगी। कभी हमारा मित्र आगे निकलेगा तो कभी हमारा सहकर्मी सफल होगा।
1: जी हाँ।
0: और कभी कोई दूसरा व्यक्ति वह अवसर प्राप्त करेगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। ऐसे समय में श्रोता साथियों, ईर्ष्या करने के बजाय दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना चाहिए। किसी दूसरे की जीत हमारी हार नहीं होती। दुनिया में सफलता के अवसर सीमित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा और अपनी मंजिल अलग अलग होती है। दूसरों की सफलता पर खुश होना हमारे व्यक्तित्व की परिपक्वता को दर्शाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके पद, पुरस्कार या उपलब्धियों से नहीं होती। उसकी वास्तविक पहचान तो उसके चरित्र से होती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई व्यक्ति बहुत सफल है लेकिन झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है या अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता अपनाता है, तो उसकी सफलता समाज के लिए प्रेरणादायक नहीं बन सकती।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, इसके विपरीत एक साधारण व्यक्ति यदि ईमानदार, मेहनती, संवेदनशील और जिम्मेदार है तो वो समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जीवन में लक्ष्य केवल सफल होना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सफलता के साथ अच्छे इंसान भी बने। कई बार हम देखते हैं अंजलि कि सफलता की दौड़ में हम अपने परिवार और रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमें लगता है कि अधिक पैसा, बड़ा पद और बड़ी उपलब्धि ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन श्रोताओं, समय के साथ समझ आता है कि जीवन की असली संपत्ति हमारे रिश्ते हैं। परिवार का सहयोग, माता पिता का आशीर्वाद, मित्रों का साथ और समाज का विश्वास, इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें अपने रिश्तों के लिए भी समय निकालना होगा। ऐसी जीत का क्या लाभ जिसमें हमारे साथ खुशियां बांटने वाला कोई न हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सफलता केवल अधिकार नहीं देती बल्कि जिम्मेदारी भी देती है।
1: जी हाँ।
0: यदि किसी विद्यार्थी ने अच्छी सफलता प्राप्त की है तो वह अपने साथियों की मदद कर सकता है। यदि कोई युवा अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। हमारी उपलब्धियां तभी सार्थक होंगी श्रोता साथियों, जब उसमें किसी व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। जो सफलता केवल हमें ऊपर उठाए वह उपलब्धि है, लेकिन जो सफलता दूसरों को भी ऊपर उठाए वही प्रेरणा है। क्योंकि जीत की चाह अच्छी है, लेकिन हर समय प्रतियोगिता में रहना उचित नहीं होता है। जीवन केवल पढ़ाई, नौकरी, पैसा या पुरस्कार का नाम नहीं है। जीवन में स्वास्थ्य, परिवार, मित्रता, प्रकृति, सेवा, आनंद और आत्मिक शांति भी बहुत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों के साथ जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। हर दिन खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम केवल सफल होने के लिए ही दौड़ रहे हैं, क्या खुश और संतुलित जीवन भी जी रहे हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज का युवा ऊर्जा, प्रतिभा और संभावनाओं से भरा हुआ है। उसके सामने अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे ये समझना होगा कि सफलता की यात्रा हमेशा सीधी नहीं होती है। कभी रास्ते में बाधाएं आएंगी, कभी आलोचनाएं होंगी और कभी असफलता भी मिलेंगी।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में खुद पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरों से तुलना करने के बजाय श्रोताओं स्वयं से मुकाबला करें। कल से आज बेहतर बनने की कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखे, अपने समय का सम्मान करें और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे।
0: जी जी।
1: याद रखें, आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि आपके कल के रूप से है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ, क्योंकि श्रोता साथियों, जीवन में जीत का महत्व है, लेकिन जीत ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: असली सफलता उस सीख में है जो हमें जीत और हार दोनों से मिलती है। जीत हमें आत्मविश्वास देती है और हार हमें सुधारना सिखाती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, धैर्य हमें टिके रहना सिखाता है और अनुभव हमें समझदार बनाता है। हमें ऐसी जीत की तलाश करनी चाहिए जो केवल पुरस्कार या प्रशंसा तक सीमित न हो, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाए। ऐसी सफलता प्राप्त करनी चाहिए श्रोता साथियों जिसमें मेहनत हो, ईमानदारी हो, विनम्रता हो और दूसरों के लिए संवेदना हो। क्योंकि जागृति जी, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी प्रतियोगिता में प्रथम आना नहीं बल्कि अपने भीतर के डर, आलस्य, अहंकार और निराशा पर विजय पाना है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जब भी जीवन में जीत मिले तो श्रोता साथियों उसे विनम्रता से स्वीकार करें, जब हार मिले तो उससे सीखें, जब रास्ता कठिन हो तो धैर्य रखें और जब मंजिल दूर दिखाई दे तो अपना कदम रोके नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि जीत एक पल की खुशी दे सकती है लेकिन जीत तक पहुंचने का सफर जीवन भर की सीख दे जाता है और यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो इंसान है जो हम उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि जीत पर रुकिए मत, जीत से सीखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
0: बिल्कुल, तो जागृति, जिस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम जान पाए कि जीत से आगे जीवन की क्या सीख है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं श्रोता साथियों की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही सच्चा स्वराज कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधर

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुकी जाएंगा। खेतर, बंजर